नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से हमारे कार्यक्रम आप दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगू विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे।

0: जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन बार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। आज का चिंतन, ये थी भक्ति रचनाएं। अब सुनिए देशगान। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको झरोका के अंतर्गत बता देते हैं आज के दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। छह बजकर 35 मिनट पर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत

सुबह में 1 बजे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। बजे मनचाहे गीत संवाद मंजू द्विवेदी प्रस्तुत करता देशी कामले। तीन बजकर 30 मिनट पर नाट्य तरंग आई लव यू का भाग एक मूल गुजराई लेखक प्रदीप सोलंकी हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनंदा नायक निर्देशिका तनुजा कानडे और 4 बजे आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज गायिका दीपाली साहा से यूनुस खान की बातचीत प्रस्तुत तेश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत 5 बजकर 30 मिनट पर तराने नए पुराने

7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का भाग दूसरा, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। रात 8:15 पर चित्रलोक, रात 9 बजे आपके लिए और रात 10 बजे छायागीत आलेख एम सर जी श्याम, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे चित्रपट संगीत मैटनी शो का पुनः प्रसारण।

अभी आपने सुना झरोखा के अंतर्गत दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 295।

नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा

शिव करते हैं। श्री राम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार पंडित जी।
2: जी नमस्कार।
1: आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं, फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है।
2: मैंने संगीत 7 साल की अवस्था
1: जी हाँ
2: में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर
1: वाह
2: जिसको आप भूल नहीं सकते।
1: हाँ, गांधी जयंती की
2: जी। और सबसे पहले
1: जी
2: कैरकट्टे नागेश राव
1: अच्छा
2: मुंबई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे
1: जी।
2: उसके उपरांत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
1: अच्छा बहुत अच्छे,
2: इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल
1: जी
2: सीखा
1: जी।
2: उसके बाद मेरे गुरु बंधु श्री चिदानंद नगरकर
1: अच्छा
2: जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन
1: जी हाँ।
2: प्रिंसिपल थे
1: जी।
2: उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना
1: जी
2: तो मैं प्रभावित हुआ
1: अच्छा।
2: और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सीखा था स्वर्गीय पंडित SN रातन जिनकर
1: जी हाँ,
2: और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा
1: जी हाँ।
2: और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी।
1: क्या बात है।
2: और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की
1: जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है
2: जी।
1: और जैसे आपने रातनजनकर जी से भी तालीम पाई है, रातनजनकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम
2: जी।
1: थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी
2: जी।
1: तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है
2: जी।
1: बड़े भाग्यशाली हैं आप।

0: ये तो है ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए मिलता था गाना उस्तादों का। लेकिन आजकल का जमाना ये है कि रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके जरिए काफी सुनने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था तो मैं काफी लोगों को सुना करता था, उस्तादों को, तो उसमें उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद फैयाज खान साहब, उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप
1: आपके
0: कुछ मेरे गायकी में अधिक मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: नहीं, वो सही बात
0: है। हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के, रतन जनकर जी के गुरु थे, तो कुछ ना कुछ बातें तो वहां से मिलती हैं, आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना से था, इसलिए मैंने वो चीजें कुछ हासिल करने की कोशिश की।
1: आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार, उनको ये ज्ञात होता है
0: जी।
1: तो पंडित जी, पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन किया है, तो आपके दृष्टिकोण से हमारे राजदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं, क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं?
0: देखिए, ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है।
1: मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ
0: जी। जैसे भविष्य की बात अलग है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं, वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे
1: जी,
0: हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ बहुत अधिक
1: है जी।
0: और वो अगर सीखें तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोग इसे भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ ये है कि उनको काफी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं
1: जी। हाँ।
0: और सीखते दूसरा घराना।
1: अच्छा अच्छा। तो
0: फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं। अच्छा। तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है
1: जी,
0: तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं
1: जी,
0: या उपशास्त्रीय संगीत
1: हाँ।
0: या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है और एक ही जगह वो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते
1: जी। हाँ।
0: इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए
1: जी, हाँ।
0: एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए वो बन नहीं पाती है। इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है। क्यों? कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है
1: जी, वो
0: कला उसका, वो पनप नहीं पाती है,
1: उसका विकास नहीं होता।
0: विकास उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं, गुजर रहे हैं कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें
1: जी,
0: तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड़ ले। मेरा कहना ये है
1: जी,
0: कि जब डेढ़ डेढ़ घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे और सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले डेढ़ घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह से गाने वाले जो है या बजाने वाले, वो डेढ़ घंटा तक एक राग को बरतना उनमें वो हाँ उतना धैर्य
1: नहीं है।
0: हाँ, ये कहिए। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड़ ले लेगा
1: जी। हाँ।
0: और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छी तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे। और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं, बजाते भी हैं।
1: और पंडित जी, पाश्चात्य श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है?
0: 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक
1: जी है
0: ना, गायन कला
1: जी हाँ,
0: वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी
1: जी। हाँ।
0: फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में
1: आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए हैं।
0: निरूपण मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया।
1: अच्छा।
0: इम्पोर्टेंस

0: साउंड कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड
1: जी हाँ
0: इन इंडियन म्यूजिक
1: जी हाँ
0: यहाँ से लेकर मेरे प्रेजेंट डे राग संगीत तक
1: जी हाँ
0: मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी तीन तीन घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद किया
1: और सुना,
0: ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय में मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है
1: एक विशाल कला है, मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी हमारे संगीत के बारे में, जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उन बातें सब आपने बता दी। हमारे श्रोताओं के लिए आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।
2: सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर कैकिनी का गाया सावन।

विविध भारती के खजाने से। आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंटवार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

छोटी बहन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुबीर सैन की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत शबनम फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
3: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
4: पल पल दिल के
3: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
5: इंतजार करेंगे।
3: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

छोटे नवाब इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की, शैलेंद्र के बोल, तर्ज बनाई थी R.D. बर्मन ने। और अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। फिल्म ससुराल का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा
3: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
2: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
2: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
4: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
2: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
2: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

जानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गोदान फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, अनजान के बोल रविशंकर की बनाई तर्ज।
1: त्रिपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: अब एक मस्ती भरा गाना भूत बंगला। इस फिल्म से मन्ना डे और साथियों के स्वरों में हर्ष जयपुरी की रचना आर डी बर्मन का संगीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात, आओ ट्विट करे अपोजम, ले आओ ट्विट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विट करे अपोजम, ले आओ ट्विट करे जिंदगी है यही, ना जुटी

dobro na

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। हमजोली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में आनंद बख्शी के बोल, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उड़ा जाए, पांव डगमगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना।
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्मदिन उन्हीं ढेरों शुभकामनाओं के साथ। आप सुन रहे हैं उन्हीं पर फिल्माए गीत, कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: झुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: महल हो

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतबद्ध गीत रवि द्वारा फिल्म एक महल हो सपनों का से आप सुन रहे थे और कार्यक्रम हम हिराही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैराही प्यार के। अगला गीत विदाई फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम विदाई।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सुनिए,
4: कहिए,
5: सुनिए एक खुशखबरी,
4: कहिए ना,
5: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
6: शुक्रिया, शुक्रिया।
5: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
7: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं, सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
5: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
7: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
5: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। जाने अनजाने इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, हंसी जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रखवाला फिल्म का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ये गीत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालास फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात

0: बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
4: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 1,00,000 टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45,00,000 टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

0: दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, @AIR News हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: मिलखा जाग मिलखा अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

0: की पाया खोली।
1: किसने? मैंने? नहीं तो?

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है।

आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का

0: हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम चित्रलोक लेकर, जहां आसमान पर बिखरी सूरज की सुनहरी रोशनी आज के दिन का मूड तय कर रही है और हवाओं में घुली ताजगी कह रही है चलो आज कुछ नया सुनते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है उन धुनों का जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचेगी, उन आवाजों का जिनमें आज के जमाने की चमक है और उन गीतों का जो शायद आज पहली बार सुनकर ही आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट का हिस्सा शायद वो गाने बन जाए। कुछ धुनें कदमों में रफ्तार भरेंगी, कुछ चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और कुछ शायद इस खूबसूरत सुबह को आपकी और भी प्यारी खूबसूरत सी सुबह बना दे। तो आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, अपने मूड को म्यूजिक के हवाले कर दीजिए और तैयार हो जाइए कार्यक्रम चित्रलोक सुनने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

कार्यक्रम की पहली पेशकश आपने सुनी मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से। नेहा भसीन की आवाज में इरशाद कामिल के बोल थे सोहेल सेन का संगीत। अगला गीत हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में। रचना इरशाद कामिल की ही है, विशाल शेखर का संगीत है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार के बोल। शारिब तोशी का संगीत।

श्रोताओं, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज है राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम जो आज मना रहे हैं, तो खेल की बात करें, खेल सिर्फ मैदान पर जीत हार का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी नाम है। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपनी शानदार हॉकी कला से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया और ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खेल प्रतिभा और समर्पण आज भी देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो आइए आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, अनुशासन और देश के गौरव से जोड़कर देखें। खेलिए, आगे बढ़िए और भारत की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कीजिए।

0: चक दे इंडिया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों के स्वरों में। जयदीप साहनी के बोल थे, संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। प्रीतम के संगीत से सजा अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और निकिता गानी की आवाजों में। फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। धूम 3 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में अगला गीत। कौसर मुनि ने इस गीत को लिखा है।

जूलियस पैकियम ने इस गीत को संगीत दिया था। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा
3: सुनहरी खाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे से

श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दुनिया को परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाली मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है। परमाणु परीक्षण से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर लंबे समय तक मनुष्य और प्रकृति पर रह सकता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोका जाए, देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं जहां परमाणु परीक्षण और उनसे होने वाले विनाश का खतरा ना हो। तो आइए आज इस दिवस पर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना और उसके लिए प्रयास करें जहां शक्ति का प्रदर्शन विनाश से नहीं बल्कि शांति, संवाद और मानवता से हो।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत बद किया था आर्को ने, फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। रिश्कियाओं, इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीत पर किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाजों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में। कुमार के बोल थे शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यही समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: संस्कृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह, अच्छा शेर है। बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं अपने कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं तुझे चाहूंगा।
3: लीना, अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी। और कहा थी?
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आएंगी, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ,

सुधा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

मन का मीट की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम झोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे बोझा था वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं रहा।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम करके थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने भाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली,

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: यानी सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
1: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
2: पल पल दिल के।
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं।

0: मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहाँ पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूँ, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूँ। मुझे मालूम था यहाँ का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं, प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ, कहां सुकून मिलेगा।
1: ये रात

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रूमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पककर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं।

और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खीच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है, और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा, पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूँ, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला। अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था, और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़-कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चलें थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज, भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूं सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो

फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा। वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

उसकी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना, ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मूड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहां रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? ये सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया, मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सृजन भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज जी और गायिका दीपाली सहाय को। इन दोनों अतिथियों का विविध भारती परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख संतोष जाधव जी ने और इंजीनियरिंग हेड सोपान ताइडे जी ने। एडीपी अनुश्री पाठक और एडीपी तेजश्री कांबले और प्रोड्यूसर जुबैर खान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संचालन आपकी इस रेडियो सखी ममता ने किया। तो अब माइक उद्घोषक यूनुस खान को सौंप रही हूँ। शैलेंद्र के गीतों और जीवन की अनमोल कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का।
1: इस बार सृजन भारती करने की वजह यह है कि 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतकारी पर बहुत गहरा असर डाला है। 30 अगस्त

1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था और बहुत छोटी जिंदगी शैलेंद्र को मिली, 30 अगस्त 1923 से 14 दिसंबर 1966 तक। 14 दिसंबर जिस दिन शैलेंद्र इस दुनिया से गए, वो राज कपूर का जन्मदिन होता है और राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, तब ये खबर आई कि शैलेंद्र नहीं रहे हैं। ये राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जरा ये देखिए कि तकरीबन उनकी जो जिंदगी थी वो 43 साल की जिंदगी थी और इन 43 साल में जो गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक, यानी तकरीबन 17 साल की। लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख, हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है और तब तक शैलेंद्र निकल लिए। ये जो एक घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए और तकरीबन 40 के दशक की बात है। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में, जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। अब हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया। शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे और बहुत जरूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपए थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपए दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के दो गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए आदमी वही है जो चलता जाए। एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में 2 बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में। बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहां आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीव देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहां पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें सलील चौधरी थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे, नवेंदु घोष थे, और बिमल रॉय ने कहा कि हमारे देश में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनी। और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी और इस फिल्म में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है, तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे।

दो बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए और ख्वाजा अहमद अब्बास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नैरेशन किया। और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नैरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नैरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थीं कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

जो आवारा का गाना है ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज आ रहे हैं जहां पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबुमुरोव हमदानोव। बोबुमुरोव हमदानोव

राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज़्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में, जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बबू रॉय के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है, और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे दिलचस्प अंतरा है वो है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतनी आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अन्योक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

जरा सोचिए कि माँ बाप को वो वहीदा रहमान ये बता रही है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है। तो ये कितना कमाल है। अमूमन हम सुन लेते हैं गाना, लेकिन सिचुएशन पर इस तरह से लिखना और वो भी धुन पर लिखना, ये बहुत नायाब गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। अमूमन हमारा ध्यान नहीं होता इस बात पर। अब एक गाने की कहानी। एक बार ये हुआ कि एसडी वर्मन ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी और कहा कि इस पर तुमको गाना लिखना है। अब काफी टाइम हो गया शैलेंद्र ने गाना लिखा ही नहीं, तो एसडी वर्मन को गुस्सा आया। उन्होंने आरडी वर्मन को भेजा कि जब तक शैलेंद्र गाना ना दे तुम वापस मत लौटना। अब ये हुआ कि शैलेंद्र के पास पंचम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में जा रहा हूं। तो वो पंचम को लेके शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में चले गए। अब वहां पर जयकिशन को ये लगा कि यार ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा इधर क्या जासूसी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा तुम यहां पर क्यों आया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शैलेंद्र, क्योंकि क्या होता है कि काम चल रहा होता है वो सीक्रेट होता है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं शैलेंद्र जी गाना नहीं दे रहे हैं तो मैं इसलिए उनके साथ आ रहा हूं। तो

ने कहा कि नहीं अभी तो वो मेरा गाना लिख रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो जयकिशन थोड़ा भड़क गए थे। शैलेंद्र ने जयकिशन का काम पूरा किया और अब पंचम ने कहा मुझे गाना दीजिए ना, नहीं तो बापू बहुत मारेंगे, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नेशनल पार्क चलते हैं। तो जुहू से ये लोग गाड़ी से नेशनल पार्क आ गए। शैलेंद्र जो है नेशनल पार्क में इधर उधर टहलते रहे, सिगरेट विगरेट पीते रहे, सोचते रहे, तो बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं एक काम करते हैं कि चलो चलते हैं जुहू बीच की तरफ। तो नेशनल पार्क से वो उनको ले गए जुहू बीच की तरफ। अब पूनम की रात थी, जुहू बीच पर शैलेंद्र बैठे हुए थे और पंचम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है। तो पंचम घबरा गए कि इनको कैसे पता चला कि मैं स्मोक करता हूं। तो उनको लगा ये क्या है। तो उन्होंने माचिस दी और माचिस पर उन्होंने ट्यून बजा के बताई। और जब ट्यून बजा के बताई तो शैलेंद्र ने वहीं जुहू बीच पर पूनम की रात में दो लाइनें लिखी और कहा कि जाओ अंतरे तुमको बाद में मिल जाएंगे। वो दो लाइनें थी, खोया खोया चांद खिला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। अब जरा सोचिए कि खोया खोया चांद तीन ही वर्ड्स हैं, है ना, खुला आसमान दो ही वर्ड हैं, आंखों में सारी रात जाएगी तुमको, मस्ती भरी हवा जो चली, ये जो कमाल है ये। और सिचुएशन जब पता चलती है तो गाना सुनना जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।

0: खोया खोया
1: जा। तो भाई ये शैलेंद्र के गानों की कहानियां हैं। बम्बई जब शैलेंद्र आए तो वो माटुंगा में वर्कशॉप में काम करते थे और परेल में रेलवे के एक छोटे से दड़बे नुमा क्वार्टर में रहते थे। उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्वाब था कि इस बम्बई शहर में अपना एक घर होना चाहिए और अरब सागर के किनारे बसा आसमान छूता शहर बम्बई, और ये शहर जो कि सिकुड़कर जीता है, कम जगहों में जीने की आदत है, यहाँ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर, पुलों पर, टैक्सी में, मैदानों में, रेलवे स्टेशनों में, जहां जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। शैलेंद्र का ये ख्वाब पूरा हुआ था 1960s के जमाने में, अपना घर बनाने का ख्वाब। 1960 में उन्होंने लिंकिंग रोड बैंड्रा में अपना एक घर बनाया, बंगलो बनाया, वो आज भी मौजूद है। अगर आप लिंकिंग रोड पर जाते हैं तो वहां एक शैलेंद्र चौक है, शैलेंद्र चौक वाली गली में अंदर जाएं तो आपको रिमझिम मिलेगा। पिछले हफ्ते ही मैं वहां जाके माथा टेक के आया, रिमझिम, वहां लिखा है शंकर शैलेंद्र और लिखा है रिमझिम। रिमझिम इसलिए क्योंकि बारिश ने उनका करियर बनाया, बरसात फिल्म ने, और बारिश उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने बंगले का नाम रिमझिम रखा हुआ है। बहुत जर्जर हालत में मौजूद है, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत बेमिसाल जगह है। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने काम करने के लिए सांताक्रूज में एक फ्लैट और लिया था जिसको बापू निवास कहा जाता था। ये जो बापू निवास है ये बड़ी करामती जगह थी क्योंकि यहां एक तरफ गुलजार मौजूद होते थे, दूसरी तरफ देबू मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मतलब ये एक तरह से घेटो था। और गुलजार साहब ने कहीं लिखा है कि बापू निवास जाओ तो पता चलता है कि कोने में बहुत सारी बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के टोटे हैं, अंडरवियर्स और टॉवल्स सूख रही हैं। हर आदमी वहां जा सकता है, हर आदमी वहां रह सकता है और किसी के आने पर कोई रोक नहीं है। इतनी भब्बड़ के बीच थोड़ी देर वक्त निकाल के शैलेंद्र अपने गाने वहां पर लिखा करते थे। बापू निवास में शैलेंद्र ने अपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, ये जगह आज भी मौजूद है, हालांकि अब ये शैलेंद्र के पास नहीं है। एक कमरा, किचन और बरामदे वाला ये घर बापू निवास। घर का जो ख्वाब है उस पर शैलेंद्र ने एक बहुत ही क्यूट और स्वीट गाना लिखा है, वो सुनते हैं।
0: छोटा

ये गाना जो है हम सबके ख्वाबों का गाना है, घर के ख्वाब का गाना है। शैलेंद्र का एक और रंग आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाऊंगा मैं। 1960 में एक फिल्म आई थी, बप्पी सोनी की फिल्म थी, एक फूल चार कांटे, जिसमें सुनील दत्त और वहीदा रहमान थे। इसका जो बहुत ही मशहूर गाना है वो है मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, वो भी शैलेंद्र ने लिखा है। लेकिन इस फिल्म में एक सरप्राइज गीत था, एक सिचुएशन ऐसी आई जहां शैलेंद्र से कहा गया कि आपको पूरी तरह से अंग्रेजी गाना लिखना है। उस जमाने में बॉम्बे में रॉक एंड रोल और जैज का बहुत चलन था, और साउथ बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जहां जैज हुआ करता था, लाइव जैज हुआ करता था। तो एक नेवी में काम करने वाले व्यक्ति होते थे सरदार जी, उनका नाम था इकबाल सिंह सेठी। इकबाल सिंह ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करते थे, और जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें गोरी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को एल्विस पसंद था, तो उन्होंने एल्विस को अपना लिया और एल्विस की स्टाइल में गाना गाने लगे। जब इकबाल सिंह सेठी को शैलेंद्र का लिखा अंग्रेजी गाना गाने को कहा गया, उन्होंने गा लिया, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी की इजाजत तो थी नहीं, तो उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा कि भाई आपने ऐसे बिना इजाजत के फिल्म में काम कैसे कर लिया। लेकिन ये जो गाना है ये है ओ ब्यूटीफुल बेब ऑफ ब्रॉडवे, रॉकिंग राइट ओवर माय हार्ट, यू हैव सेट मी अ फायर एनीवे, यू आर टू गुड इन योर आर्ट। ये शैलेंद्र ने अंग्रेजी गाना लिखा है।

ये अंग्रेजी गाना शैलेंद्र का लिखा हुआ, शैलेंद्र ने बहुत मजा किया, गाने भी लिखे हैं और ये अंग्रेजी गाना भी उनका एक कमाल है। बल्कि एक गाना है अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, उसमें वो अलग अलग भाषाएं लिखते हैं। वो गाना आज मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, पर उसको आप कभी सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, इन तमाम भाषाओं के सेंटेंसेस आते हैं। एक बार ये हुआ कि शैलेंद्र और शंकर जयकिशन का अपना आपस में एक वादा था कि हम साथ काम करेंगे, हमेशा एक साथ काम करेंगे, जब भी हमें कोई फिल्में मिलेंगी तो गाने आप लिखोगे और ये एक हमारी टोली जो है हम उसको हमेशा निभाएंगे। लेकिन एक फिल्म आई कॉलेज गर्ल, जिसमें पता नहीं क्या वजह थी कि शैलेंद्र की बजाय शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कृष्ण को साइन कर लिया। अब शैलेंद्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई ये वादा खिलाफी हो गई और मेरी बजाय किसी और से लिखवा लिया, तो वो बहुत नाराज हो गए। और एक रेस्टोरेंट में उन्होंने देखा कि शंकर जयकिशन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, और बैरे से कहा कि जाओ उसको दे आओ। तो ये नाराजगी थी और शंकर जयकिशन ने इसे एक गाने में बदल दिया, प्रॉपर गाने में बदल दिया। तो आम जिंदगी की ये घटना जो है ये रंगोली के गाने में बदल गई। ये गाना सुनिए।

0: दुनिया।
1: और अब शैलेंद्र और नवकेतन की सबसे बड़ी फिल्म गाइड की बात करते हैं। गाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब गाइड फिल्म बन रही थी तो उसके लिए गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को चुना गया था, और हसरत जयपुरी ने एक दो गाने लिखे भी थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था इस फिल्म के हीरो के बारे में जिसका यहाँ जिक्र करना या उसे बोलना बहुत अशालीनता हो जाएगी, तो उनको फिल्म से निकाल बाहर कर दिया गया था। और शैलेंद्र जी के पास गए थे विजय आनंद और देवानंद, और उन्होंने कहा कि आपको गाइड फिल्म के गाने लिखने, तो उन्होंने कहा सिंस आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस मैं डबल पैसे लूंगा, और उन्होंने डबल फीस चार्ज की थी। लेकिन गाइड के जो गाने उन्होंने लिखे हैं, एक एक गाना इतना कमाल है। सबसे पहले मैं मुसाफिर जाएगा कहां की बात करना चाहता हूं। अगर आपने गाइड फिल्म देखी हो तो इंटरमिशन के भी एक घंटे बाद एक दृश्य आता है जहां रोजी जेल में राजू बंद है और उससे मिलने जाती है, और वहां वो ये कहती है कि राजू तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा, काश मैं तुमको बचा पाती। और कोई बात नहीं, ये वक्त बीत जाएगा और फिर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तो राजू जेल की सलाखों को पकड़ता है और कहता है हाँ रोजी, नए सिरे से शुरू करेंगे जीवन।

मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से शैलेंद्र ने इस गाने को उगाया था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। मुझे ये लगता है कि वहीं राजू ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौटना है, उसे ना तो रोजी के पास लौटना है, ना अपने घर, अपने गांव, अपनी माँ के पास लौटना है। और जब वो जेल से छूटता है, और उसके बाद अगर आप इस गाने को देखें, गाइड फिल्म शुरू इस गाने से होती है, और जब आप देखें तो सबसे पहले राजू का सूटकेस गिरता है, रोजी की तस्वीरें गिरती हैं, उसके सूटकेस छूट जाता है, उसके बाद चप्पल छूट जाती है, उसके बाद कपड़े छूट जाते हैं, फिर वो कभी किसी बस में लटक के जाता है, कभी किसी ट्रक पर जाता है, और फिर एक जगह थक के लेटा हुआ होता है और एक साधु उसको रामनामी चादर ओढ़ा देता है और वहां से वो साधु मान लिया जाता है, और फिर जो गाइड का कंफ्लिक्ट है वो शुरू होता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि एस डी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुम्हें चोलो जाइबारे कोबे आईबारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था, और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का, वो है तूने तो सबको राह बताई तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां, क्यों नाचे सपेरा। क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गाना जिंदगी की क्षणभंगुरता, रिश्तों के खोखलेपन, समाज और संसार की सच्चाइयों को उजागर करता है। इसका एक अंश सुनते हैं।

गाना, और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आजादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है, और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है, ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था। और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए जयपुर चले गए और उन्होंने एसडी बर्मन से कहा कि गाना जल्दी भेजिएगा। तो एसडी बर्मन ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है, उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं। बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया। एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों गाने आएंगे, बैक टू बैक आते हैं। जब वो मुंह से छल किए जा होता है और मुंह से छल किए जा जैसे खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में फंसे हुए हैं और वहां पर क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। एक ही ट्यून पर दोनों गाने हैं और वो भी दोनों गाने बहुत ही कमाल के गाने हैं। लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प किस्सा शैलेंद्र के गानों के बनने का हुआ। यह था कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लेख टंडन एक दिन फेमस तारदेव में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी, तकरीबन 100 साजिंदे तैयार थे, रिहर्सल हो चुकी थी और लता जी के आते ही गाना रिकॉर्ड हो जाना था। लेकिन तभी स्टूडियो में राज कपूर का फोन बजा और राज कपूर ने जयकिशन को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कि कविराज ने कौन सा गाना लिखा है। अब ये हुआ कि उन्होंने फोन पर ही पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना सुना। वो गाना था काटे न कटे रहना, और जैसे ही गाना खत्म हुआ उन्होंने कहा ये गाना मुझे दे दो, इस गाने पर मेरा हक है, तुम लोग दूसरा लिख लो। अब गाना नहीं है और लता मंगेशकर आने वाली हैं। अब लेख टंडन की हवाइयां उड़ रही थी कि लता जी आएंगी तो क्या करेंगे। लता जी आई भी और फिर ये कहा गया कि भाई गाना तो था लेकिन अब नहीं है, अब गाना लिखना पड़ेगा। तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे गाने रिकॉर्ड करके आती हूँ, तब तक आप लोग गाना लिख लो। अब ये हुआ कि शैलेंद्र को लेख टंडन लेके गए आरे कॉलोनी, वहां उनको खाना दिया और कहा कि भाई यहाँ लिखो, तो उन्होंने खाना खा लिया लेकिन गाना नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नेशनल पार्क चलते हैं, नेशनल पार्क में घूमे, वहां पर भी गाना नहीं हुआ। अब लेख टंडन को लगा कि आज मर गए, क्योंकि लता जी जब आएंगी और दोबारा गाना नहीं है तो क्या होगा हमारा। तो जब वापस लौटे तो देखा लता जी की कार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो लेख टंडन कहीं जाके छिप गए। उन्होंने कहा तुम ही सामना करो, मैं तो भाई इस मामले में नहीं पड़ूंगा। तो लेख टंडन छुप के देख रहे थे कि स्टूडियो के केबिन में शैलेंद्र लता जी के पास गए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। लेख टंडन को ये लगा कि शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि मेरे से गाना हुआ नहीं और मैं ये गाना बाद में लिख दूंगा और लता जी की डांट खाएंगे। पर जब उन्होंने स्पीकर का PFL दबा के सुना कि अंदर बात क्या हो रही है, तो लता जी की आवाज आई, दो ही अंतरे होंगे ना शैलेंद्र जी, यानी लता जी के सामने बैठ के उन्होंने एक झटके में गाना लिख दिया वहां पर। और ये गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी।

जरा सोचिए कि ये गाना जो शैलेंद्र ने एक झटके में ऐसे लिख दिया जैसे कहीं से याद करके आए हों, इस गाने की जो अंतरे हैं वो क्या कमाल हैं। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, ये एक अंतरा है। दूसरा अंतरा है जीवन से कैसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा, और ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी गागर में सागर का पानी। इतने जोरदार तरीके वाला गाना और ऐसे एक झटके में लिख दिया, ये शैलेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है। और जरा सोचिए कि जो पीछे की कहानी है ये इन गानों को ज्यादा नायाब बनाती है, और शैलेंद्र की जो लफ्जों की कारीगरी है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से उभारती है। 1948 में जब राज कपूर आग बना रहे थे तो इंदर राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम रखा गया था घरौंदा। राज कपूर ने तय किया था कि इसे वो बनाएंगे नरगिस के साथ, लेकिन वो हो नहीं सका। और बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों को ऑफर किया, देवानंद को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया, उत्तम कुमार को ऑफर किया, उन्होंने काम नहीं किया, राजेंद्र कुमार राजी हुए, नरगिस की जगह पर वैजयंती माला आई और घरौंदा की बजाय इस फिल्म का नाम रखा गया संगम। संगम राज कपूर की बहुत बड़ी फिल्म, दो इंटरवल वाले इसके वर्जन होते थे, और अभी पीछे जब राज कपूर फेस्टिवल NFAI ने किया था तो दो इंटरवल वाला वर्जन रिलीज किया गया था और वो हमें टॉकीज में देखने मिला था। क्या कमाल की ये फिल्म है। और जरा सोचिए कि इस फिल्म में शैलेंद्र, यहां जो पक्ष है अब जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शैलेंद्र के भीतर बैठा एक स्त्री मन। शैलेंद्र एक महिला की व्यथा को बहुत खूबसूरती से गानों में उतारते रहे, और तीन गानों की मैं बात करूंगा जो शैलेंद्र के स्त्री मन को दिखाते हैं। इस फिल्म में एक गाना है।

ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम जो है वो एक ऐसा गाना है जो एक स्त्री जिस पर उसके पति को शक है, फिल्म की क्लाइमेक्स में जब ये गाना हो रहा होता है तो ये गाना जैसे अपनी सारी बातें कहता है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान है हम, ओ मेरे सनम। और यहाँ शैलेंद्र आगे लिखते हैं कि ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ये शैलेंद्र का एक स्त्री मन है।

शैलेंद्र की स्त्री मन की बात हो रही है। कुछ और गानों का जिक्र करते हैं। जागते रहो के एक गाने में वो एक स्त्री की तमन्नाओं को लिखते हैं। ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की खुली मत छोड़ो, ये गाना। और दूसरी तरफ एक और गाना है जिसमें कहते हैं कि एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, ये भी कितनी सुंदर लाइन है। और इसी तरह से बंदिनी के एक गाने में वो लिखते हैं कि मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सात्रे सागर, कैसे चलूं उस पार। ये क्या कमाल का गाना है। ओ पंछी प्यारे सांसकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। पर एक ऐसा गाना है जो इन तमाम गानों पर भारी है और ये फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, जिसका गाना है अजीब दास्तां है ये। इस गाने का बैकग्राउंड ये है कि हीरोइन जो है वो नर्स है मीना कुमारी, और अचानक वो ये पाती हैं कि डॉक्टर साहब कश्मीर गए तो उनकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है और शादी की पार्टी हो रही है। मीना कुमारी की तो सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और वहां पर वो ये गाना गाती है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म।

एक और गाना जो शैलेंद्र की स्त्री मन को दिखाता है, और वो गाना है 1963 की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना। इस फिल्म में ये है कि जो पति है उसकी मृत्यु होने वाली है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, और पत्नी के दिल के भीतर तूफान मचा हुआ है, और वहां वो गाती है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की रहना। वहां वो लाइन जो है, शैलेंद्र ने अल्फाज का खेल किया है, कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे, जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे। ये शैलेंद्र हैं।

1964 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह हो रहा था तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड साहिर लुधियानवी को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये अवार्ड उन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया के लिए दिया जाना था। ऐसा कहा जाता है कि साहिर मंच पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि

इस अवार्ड के सच्चे हकदार शैलेंद्र हैं, जिन्होंने बंदिनी के लिए मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसा गाना लिखा है। और साहिर ने ये कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीत है, और ये भी उन्होंने कहा कि शैलेंद्र असली गीतकार हैं, हम सब तो बस शायर हैं। बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी बांग्ला के एक बहुत ही मशहूर लेखक हुए जो जेलर थे, उनका नाम था जरासंघ, और उनकी कहानियां हमेशा कैदियों पर केंद्रित होती थी। बंदिनी भी कैदी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिससे एक मर्डर हो जाता है, जहर दे देती है वो। तो ये फिल्म थी, और इस फिल्म में एस डी बर्मन ने एक बहुत ही सुंदर कजरी बनाई थी, निबुआ तले डोला रख दे मुसाफिर पर अब के बरस भेज भैया को बाबुल। और मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये सभी की आंखों में आंसू ला देता है।

0: इतना सुंदर गाया दीपाली ने, हर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर। अब हम मधुमती की तरफ बढ़ रहे हैं। मधुमती बिमल रॉय, सलील चौधरी और शैलेंद्र की टीम का एक कमाल थी, और इस फिल्म से जुड़े ढेर सारे किस्से हैं, जैसे सुहाना सफर और मौसम हसी गाना बन रहा था तो सलीलदा और शैलेंद्र खंडाला घाट पर घूमने चले गए थे। वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते हुए यूं कर रहा था, हुर्र। और आप ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर हुर जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरासी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है। जागते रहो के बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है और सलीलदा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमती के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलीलदा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायास ही शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंतर फेरूं

फिल्म है जिसकी डायलॉग शैलेंद्र ने लिखी थी। विमल राय की यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, 5 लंबी कहानियां, जिसमें एक कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। पर शैलेंद्र नहीं माने और उन्हें वो फिल्म बनानी ही थी। पर इस फिल्म को बनाने का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट रहा। जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत स्कैम किया और अनायास बिना बात के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। फिल्म बनने में बहुत देर हुई, ओवर बजट हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए। कहते ये हैं कि शैलेंद्र का बहुत दिल टूट गया था इस फिल्म को बना के। हालांकि उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था और उनकी बेटी से जब मैंने ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र रिकवरी वो 2 साल में आराम से कर लेते, जो फीस वो लेते थे वो बहुत शानदार थी, तो वो जो भरपाई नुकसान की थी वो 1-2 साल में कर लेते, लेकिन तब तक उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। तीसरी कसम के लिए उन्होंने एक बेमिसाल गाना लिखा था, उसको सुनते हैं।

गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची। उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहर ही छोड़ दी, पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।

ये शैलेंद्र का लिखा आखिरी गाना था और ये वो दौर था जब शैलेंद्र की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो रही थी और 14 दिसंबर 1966 को जब शैलेंद्र को एम्बुलेंस लेके जा रही थी तो राज कपूर के घर के सामने से गुजरे और राज कपूर ने उन्हें आखिरी बार देखा और ये कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे कविराज और हम फिर मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन 14 दिसंबर को शैलेंद्र ने अलविदा कह दिया। राज कपूर के जो बहुत ही

0: अजीज लोग हैं वो इसी तरह से छूटते चले गए थे। जैसे मुकेश गए तो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज चली गई, कविराज शैलेंद्र गए तो वो बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे। केवल 43 बरस की जिंदगी, 17 साल का करियर, और ये तो एक घंटे का प्रोग्राम है, पर अमूमन मैं शैलेंद्र के गानों की जो कहानियां हैं वो 3 घंटे तक सुनाता हूं। आज की ये महफिल इतनी ही, जाहिर है कि बहुत बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी और कहानियां कही जा सकती हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं। एक ऐसा गीतकार जिसने हमारी जिंदगी के बहुत सुनहरे पलों को बांटा है। हम विविध भारती परिवार की ओर से शैलेंद्र को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज का सृजन भारती कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय ब्रह्मात्मक जी क्या कहते हैं।
2: शैलेंद्र के यहाँ लोक बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है, चाहे वो लोकगीत की परंपरा हो, किस्से कहानियां हो, उसके अलावा भक्ति काव्य की निर्गुण परंपरा, सगुण परंपरा से नहीं लेते हैं वो, निर्गुण परंपरा से चीजें लेते हैं। अध्यात्म बहुत है उनके कविताओं में, उनके गीतों में, सब जगह है। जो 26 साल से पहले की उनकी उम्र है, जहाँ उनका शैशव है, जहाँ उनकी जवानी है, जहाँ वो काम करते हैं रेलवे में, 8 साल मशीन के तानपुरे के साथ में कविता करता रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उन्होंने खुद लिखा है। तो मशीन का तानपुरा, ये शिमली अपने आप में कैसी लगती है। और ये उनके टीचर ने कभी कहा था, जब वो मथुरा छोड़ के आ रहे थे इधर, तब उन्होंने कहा क्या तुम अब मशीनों को सुन के गीत लिखोगे। उनके सारे गीत चरित्रों के हिसाब से लिखे गए हैं और उस परिस्थिति के हिसाब से लिखे गए हैं, और गीत संवादों का काम करते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है जानी मानी गायिका दीपाली सहाय के विचार गीतकार शैलेंद्र के बारे में।
3: शैलेंद्र के प्रेम में कोई गायक या गायिका नहीं है जो उनके प्रेम में नहीं है। और हम प्रेम शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सिंगिंग में धुन बनाना और गाना लिखना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, पर ये उनका जो सपना है, धुन बनाने वाले का और गाने लिखने वाले का जो सपना है, वो पूरा करता है एक गायक या गायिका। और जब तक कि हम लोग उस सपने को समझेंगे नहीं, हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और शैलेंद्र हर सिंगर के लिए वो इंस्पिरेशन है। और मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है कि धुन बनाने से ज्यादा कठिन है उस सिचुएशन पर कुछ लिख देना। क्योंकि आप अगर देखिए, आज अगर तेरे पास में हिट है तो वो उसके शब्दों की वजह से लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास, सिंपल सी भाषा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब लिरिक्स अगर नहीं हो गाने में और उसमें कुछ संदेश नहीं हो, हर कोई संगीत नहीं समझ सकता है, पर भाषा के आते ही उसको एक मतलब मिल जाता है। और वो मतलब लेकर आते हैं हमारे लिए शैलेंद्र। और हम क्योंकि बिहार से हैं और हम बहुत छोटे थे जब हम उनके लिखे गाने सुनते थे, और फिर बड़े हुए और भोजपुरी के उनके गाने हमने भी कवर किए उनके गाने, तो शैलेंद्र के लिए मेरे अंदर जो है वो मेरे लिए बोल पाना नहीं होगा आसान। हम गा के जरूर कुछ कहना चाहेंगे।
0: बिल्कुल,
3: और
0: बिल्कुल।
3: एक गाना जो बहुत दिल के मेरे करीब है।

0: दोस्तों, सृजन भारती का ये अंक केंद्रित है जाने माने गीतकार शैलेंद्र पर। लीजिए, अब प्रस्तुत है दर्शकों के बीच उपस्थित गीतकार डॉक्टर सागर के विचार।
1: शैलेंद्र, मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है। मैं हैरत इसलिए बोल रहा हूँ कि शैलेंद्र का जन्म हुआ रावलपिंडी पाकिस्तान में, और वहाँ से वो आ जाते हैं मथुरा, जिस कविराज की अपब्रिंगिंग ब्रज भाषा की है। और ये हैरत नहीं तो और क्या है कि चलत मुसाफिर मोहली, अरे पिंजरे वाली मुनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया।
2: क्या बात है।
1: और शैलेंद्र रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, ब्रज भाषा में बड़े हो रहे हैं, पैदा पाकिस्तान में हो रहे हैं। जो उनका रूट है आरा का, वो किस तरह से शायद उनकी माँ बोलती होंगी वो भाषा, और माँ से वो जबान आई होगी,
2: उनके घर में बोली जाती थी।
1: शैलेंद्र बाज भी, कपूत भी, पपीहा भी,
2: बाबा
1: कहीं बाज की तरह भी होते हैं और पपीहा और कभी कबूतर हो जाते हैं। वो इतने विविध रंग हैं। शैलेंद्र मेरे लिए एक हैरत की दुनिया है। तो मैं इसी के साथ बात खत्म करता हूँ।
0: तो ये थी सृजन भारती के अंतर्गत शैलेंद्र के 103 बरस होने पर उनके गीतों और जीवन की कहानियां। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान का। सृजन भारती के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन किया तेजश्री कांबले ने। इंजीनियरिंग टीम किरण बंग, समृद्धि नायक, अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग मनीषा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब अपनी इस रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
3: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक

0: संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंग।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बपी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

0: आते रहे।
1: आवाज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम। लेकर बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुने, तो वो इबारत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी, अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थी। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी ओढ़े चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं, आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूख कर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द।

और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं, तो आज जरा आपकी परीक्षा कठिन है। देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये शब्द आया या नहीं और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहेली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, आसानी से बूझ जाएंगे। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है। पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा। किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है तो किसके लिए लिखती है। संगम फिल्म का गाना ये रहा।

उन्होंने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया, खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं। मुझे खत लिखना बेहद पसंद था है, और मुझे खत के जवाब में इंतजार में भी मजा आता था। खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी, पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जरा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेरिस्त लिखिए, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है, और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नजर आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आंखों में उतर आती है। ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था? अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ कीजिएगा सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है, खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे, क्या तितली पकड़ में आती थी। वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है, सब लोग अपने अपने जमाने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे जरा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है, हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं, ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो जरा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के जमाने में भी। तो जरा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को, याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए, और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है। कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधले नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे। तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अभी हम आपको कागज के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बज गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप भारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं, और तब तक आपकी टिप्पणियां आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था, बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि

जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना। और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये। तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं? बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको बूझना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार का संगीत था। और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है। कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा

हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते। बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना। वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए, जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था इस गाने का जिक्र किया था वो गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के

साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

0: मिलखा जाग मिलखा अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क

0: रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-316807 +977-970-910-7500 और +979810326117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142849 समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हम

0: हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
3: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
5: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं,

0: ट्रिब्यूट प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस एक घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
0: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब सुना

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। फिल्म 14वीं का चांद।

14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे, डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये है, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव, जत्तो रानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तो। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्णनगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: अरे, देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: तो क्या, मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं?
3: हैं? ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत

0: नहीं है समझी।
1: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
0: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
1: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
0: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है अकल।
1: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
0: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
1: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
0: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
1: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
0: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
1: नहीं नहीं मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही हूँ। अखबार पढ़ेंगे बताओ बैठ कर।
0: बाप रे बाप कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने 2 सिर वालों को 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा रेखा भाई सुनती हो?
1: अरे क्या है क्या है?
0: ये देखो पढ़ो देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
1: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
0: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
1: आज रामू नहीं आया। जानते हैं रामू नहीं आया बर्तन कौन साफ करेगा? तुम्हारा चाचा।
0: क्या कहा तुमने?
1: मैंने कहा बर्तन कौन? तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
0: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ ठीक करो। चाचा जी
1: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
0: अरे अरे अरे आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
1: क्या
0: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
1: अरे वो रामू नहीं आया ना तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
0: भूल गई खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है।
1: अब करना क्या है वो बोलो।
0: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
1: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
0: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
1: जी गलती हो गई बस।
0: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
1: तो गलती सुधार लो।
0: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
1: बस रहने दो आप। और बस बहुत हो गया अब और समय बर्बाद मत करो जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस
0: साफ सफाई कौन करे? मैं करूं?
1: तो क्या हुआ भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
0: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
1: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
0: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
1: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
0: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति
1: पति नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे कभी इधर।
0: एक सुन लो कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला।
1: तो मत करो चाचा तुम्हारे आ रही है मेरे नहीं।
0: हाँ और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
1: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
0: ये बताने की जरूरत नहीं वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
1: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
0: जी और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ। उन्हें घाट पीपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
1: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो मेरी चप्पल। कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के इस पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी। जैसे हम पर भिखारी हैं।
0: अब रहने दो मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
1: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति।

0: चाचा एक ही जैसे होती हैं।
1: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
0: चप्पल टूट गई है।
1: टूट गई? किसने तोड़ी?
0: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पाँव में आएगी?
1: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
0: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं, क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
1: अरे भाई, चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
0: वो
1: मैं कहता हूँ, मेरे बूट कहाँ है?
0: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। बदमाश,
1: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
0: कल रात तुमने वहाँ उतारे थे।
1: अरे भाई, इसके फीते कहाँ गए भाई?
0: ओहो, अब मुझे क्या मालूम,
1: विकल्प तो थे ना।
0: चूहा ले गया होगा।
1: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
0: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं, तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं, तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
1: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
0: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
1: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना। मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
0: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा। दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, मनोहर लाल की धर्मशाला।
1: मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई, इस बूट का फीता कहाँ गया?
0: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
1: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
0: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
1: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
0: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
1: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा? बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
0: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो?
1: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं, बल्कि तुम्हारी ये पकपक है, पकपक।
0: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
1: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
0: अरे शादी के पहले तो कहते थे रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
1: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
0: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
1: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
0: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
1: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी? अब, अब, अब, अब, अब, मर गया, अब मर गया, चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
0: देखो मेरे कपड़े कपड़े वपड़े तो ठीक है ना?
1: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है? वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिचड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
0: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
1: मैं जा रहा हूँ।
2: मौसी मौसी मौसी, कहाँ हो तुम मौसी?
1: हाँ अरे भाई, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं
2: मौसी। क्या? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मोहली पीछे पड़ा है।
1: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
2: महोदय जी, आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
1: वो क्यों?
2: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
1: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है?
2: मौसी मौसी कहाँ है लेकिन?
1: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
2: आज से क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
1: अभी अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
2: मौसी कहाँ है बताइए ना।
1: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
2: मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
1: ओ हो हो हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
2: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
1: Then you should not marry, because marriage is a biggest joke.
2: Please, मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
1: घर में झगड़ा कर आई हो?
2: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
1: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
2: मैं क्या सबके सब झगड़ा करती रहती हूँ, आप

0: कैसी लगती हूँ?
1: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
0: इनफ इनफ इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने।
1: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
0: घर मेरी मौसी का है।
1: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
0: ऐसा आप समझते हैं?
1: क्या मतलब?
0: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
1: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
0: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
1: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
0: मौसा जी,
1: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
0: नहीं।
1: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे।
0: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
1: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
0: हाँ, लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
1: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
0: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
1: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
0: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
1: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
0: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
1: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
0: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
1: किसके बारे में?
0: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
1: क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
0: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
1: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
0: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी, और असल में काम वाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बस चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
2: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प रेखा।
3: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? लीना, तुम क्या हुआ?
1: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
3: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रही हो?
1: इस पर पिताजी आए हैं।
3: तुम कब आई लीना?
0: अब भी थोड़ी देर पहले।
3: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
0: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
3: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना?
0: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
3: क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
3: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
0: पति? गधा है गधा।
1: मालूम होता है लात खाकर आई है।
3: तुम बीच में ना बोलो जी।
1: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना? अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पड़ी पहन चला जाता हूँ।
3: अरे, अरे ये क्या पागलपन है,
1: थोड़ी छोटी होती है बस।
0: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
1: गुलाब जामुन, रस मलाई।
0: मुझे नहीं खानी।
3: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
1: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
3: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
1: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
3: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
1: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
3: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
1: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
3: तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
0: अरे अरे कोई दरवाजा तो

0: अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना।
2: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
0: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
1: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
3: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
0: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
3: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
0: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हुँ? मेरी जासूसी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? बेशरम
4: लीना, तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो?
0: गेट आउट, आई से गेट आउट।
3: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
0: ये लोग कोई पराए नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
1: चलो ये वीरन के जूते ही डाले लेता हूँ।
4: ये तुम क्या कर रहे हो?
1: ये बूट बूट बूट
3: ये बूट तो मेरे हैं।
1: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
2: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप।
4: कितनी घर में मेहमान आई है।
3: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
0: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
3: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
0: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
4: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों? यूं
3: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
5: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
3: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
5: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
3: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
5: क्या बोलो?
3: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
5: ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम बाग में बैठे।
3: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
5: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
6: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
3: नो,
6: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
3: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
3: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
5: जाने

0: चलो किसी होटल में चलते हैं।
1: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
2: ऑल राइट, एज यू विश।
3: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
2: क्या है?
3: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
2: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
3: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
1: ये आपने कैसे समझ लिया?
3: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
2: मगर आप हैं कौन?
3: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
2: भूखे हो? पैसा चाहिए, लो।
3: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ। लेकिन बात करने की जगह नहीं।
1: आप क्या चाहते हैं?
3: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
2: स्याही खत्म हो गई?
3: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
1: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
3: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
2: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
3: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
1: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
2: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
3: मैं आगे बढ़ूं?
1: ओह श्योर।
3: यू सी, अमर के पास सब कुछ है लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
2: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
3: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
1: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
3: देखने में नहीं लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
1: फिर?
3: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
1: पर क्यों?
3: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
1: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
3: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
2: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
3: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
3: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
3: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
3: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
3: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
3: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
3: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
3: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
3: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
3: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना।
1: हाँ,
2: अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना,
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस

0: का छिजलापन पसंद नहीं. वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड.
1: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए.
0: प्लीज मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद.
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरे खातिर तुम नहीं बोलोगी?
0: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
0: बेकार की जिद मत करो.
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
0: ना
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
0: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली.
1: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज. मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ. अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो.
0: वीरेन लगता है तुम पागल हो गए हो.
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में.
0: चलो अब हम चलते हैं.
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
0: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद.
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
0: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती. तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो. अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी. मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई. टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म. उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है.
0: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो.
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
0: जब देखो तब लव लव लव. मत करो, मैं नहीं बोलने वाली.
2: लीना लीना ये झूठी जिद है.
0: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द हैं ना.
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है.
0: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की.
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती.
0: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है.
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो.
0: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली. अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ.
1: अरे लीना लीना, हेलो. अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल हैं.
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं.
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखो चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं. हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ होगा.
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं.
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी.
3: क्या तुम भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया?
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी. हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने. इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे. निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कांगड़े. आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग. ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी.
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है.
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती.
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने. उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया.
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
6: जी.
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है.
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे.
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है.
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
7: बॉम्बे टॉकीज,
8: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन.
9: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते

0: हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।

0: क्या बात है, क्या बात है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर।
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहां जिस परिवेश में पैदा हुए वहां रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: एंड आई एम नॉट लाइंग। ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है। टू नो व्हाट इंडियन फिल्म नहीं समझाती है बेचारे, वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे, तो ऐसा था मेरा बचपन में। हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था।
0: गाड़ी मतलब
1: 4-व्हीलर
0: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली
1: नहीं नहीं नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही यू नो एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12-13-14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे। तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
0: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
1: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
0: तो पैर पहुंचने लगे।
1: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो बाई 6th से लेके 8th 9th तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा

0: लाइसेंस बने कि बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो, लेकिन बिकॉज और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है, तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था, और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही, आप
1: एजुकेशन पर
0: एजुकेशन
1: फोकस।
0: पे फोकस है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं, तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी, तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों
1: दिमाग
0: के
1: में बैठ
0: बोलने
1: गया
0: से
1: था।
0: दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर
1: क्या
0: होते
1: बात है।
0: तो
1: अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले हैं आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ,
1: बहुत ही रेपुटेड
0: बहुत
1: इंस्टीट्यूशन।
0: बहुत बड़ा रेप्यूटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है, मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे,
1: मतलब इतनी काबिल है
0: इतनी
1: वो।
0: काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है आईआईटी का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो
0: मूड
1: में नाम
0: इंडिगो
1: कमाना आसान बात नहीं है,
0: नहीं है,
1: क्योंकि
0: नहीं
1: मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे
0: करेक्ट,
1: आईआईटी का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं
0: राइट
1: तो नशा होता है संगीत का वहां।
0: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था, सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर, और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन
1: वाह
0: दैट
1: वाह।
0: कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्या और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो
1: बिल्कुल।
0: इट वाज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया हमको।
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण

0: विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या तो
1: अच्छा
0: जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहां एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि इस
0: हाँ
1: बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो
0: बिल्कुल,
1: यहां कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं, ये तो
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: समझ ही
1: यहां तो
0: चुके हैं।
1: दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
0: तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सुंदर

0: बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में

0: बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा जमाना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक
1: सीएसआर
0: हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम सेवेंथ एर्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहां नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें। अच्छा, खूबसूरत आवाज है आपकी,
1: शुक्रिया।
0: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
1: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में आपने?
0: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
1: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
0: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे, हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं। मेरे माँ बाप को 12th के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड।
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम देके निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं,
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं, और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था, हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था, तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था। बट यहाँ पे लोग काफी आगे

0: बड़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था. तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था. ऑल दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी
1: अच्छा
0: अंग्रेजी इसको कैसे आती है. और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए. वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं. हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो.
1: अच्छा
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं.
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला आ रहा
0: इतना
1: है।
0: बड़ा, और वो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है. जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वो ही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना. कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते, मायने नहीं रखता है. बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू.
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और
0: एक
1: दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं
0: नहीं
1: होता है,
0: होता है. करेक्ट
1: बाकी तमाम चीजें भी
0: करेक्ट
1: धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा।
0: बहुत डिफिकल्ट था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस. हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे. बट मेरे पर्सनैलिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है.
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग. आप तब आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है.
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी, तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था. वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको, अब तो
1: अच्छा
0: आउट हो चुके हैं.
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया। वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात
0: बात
1: नहीं
0: नहीं
1: करता
0: करता है.
1: कि, लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं. हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग. तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स
1: अरे भगवान।
0: कि हम तो इनके जैसे, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम तो हम करके बात करते हैं, तो चलो इसको छुपाते हैं. और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली. बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास. तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं. आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर. वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती.
1: ये भी मान चुकी
0: ये
1: थी
0: भी
1: आप।
0: माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा. इसलिए हम हार गए.
1: अरे बाप
0: हम
1: रे।
0: इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते. एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है.
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी, पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे।

0: बिहार से हैं। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहां ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान।
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सर, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का।
0: बताइए, बेटी बचवा।
1: हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो हैं उस दिशा में जा रही थी। वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिर जा कुमार

0: बाबू जी
1: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
2: जी,
1: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
2: पहले वो जमाना ऐसा था जिस, ये संभिकारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
1: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
2: बहुत प्रसिद्ध
1: जी।
2: वो उस समय वहां के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज ना देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
1: जो गंगा मैया में भी होता है,
2: जो गंगा मैया में भी होता है, कहानी भी यही है।
1: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
2: उसमें

0: ही कहानी है
1: जी।
0: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
1: कितना मार्मिक है।
0: तो ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आई एम वेरी लकी।
1: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
0: है
1: जी। बिल्कुल,
0: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
1: ख्वाब होता है,
0: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
1: जी,
0: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
1: बहुत बड़ी बात बोली है।
0: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
1: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
0: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे। जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो है जीवन।
1: हाँ।
0: जीवन वो है,
1: बिल्कुल,
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट।
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
0: और
1: था।
0: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी अपने
1: अपनी कमजोरी में, दुनिया के सामने
0: नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है,
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था, लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने,
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ।
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है, बोले ना सब

0: में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले
1: हो गई।
0: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा, एक
1: बिल्कुल।
0: कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं जो राज कपूर साहब
1: यस,
0: की फिल्मों में, वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस
1: वहां पर
0: प्रॉपर्टी रूम
1: है।
0: में। यहां हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए, इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है।
1: हे
0: ये
1: भगवान।
0: स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं उस वक्त हम तो किसी किस कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम
1: मतलब
0: दुखी
1: एक
0: हैं।
1: अकेले कमरे में
0: अकेले
1: अपना
0: कमरे में
1: पूरा
0: रो
1: दुख।
0: के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ
1: गजब,
0: लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल, और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे यू नो, और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, यू नो, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और यू नो, क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं। सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को यू नो हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और
0: वापस
1: अपने माँ बाप को
0: लौटना,
1: बताना,
0: बताना, उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको, हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वोशेंट हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यहां हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी, अब तो
1: बीच
0: शी
1: में
0: इज
1: तो एक
0: अराइव्ड,
1: भंवर है कि अब क्या करें।
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहां से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे, अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता, तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे

0: माँ बाप के लिए होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाता
1: सब
0: है,
1: मुड़ के देख
0: सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है। जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात
0: हाँ।
1: है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई
0: सैक्रिफाइस
1: बहनों का
0: होता है,
1: कितना बड़ा
0: सबका
1: योगदान
0: सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ
0: 2-3 साल के अंतर पर
1: इससे
0: हैं।
1: कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी,
0: तो
1: बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा, हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मोड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया, यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है,

0: क्या बात है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है, मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

दोस्तों के साथ बिताई शाम में किसी खास जगह की जरूरत नहीं होती। कभी पार्क की बेंच, कभी छत का कोना, कभी चाय की छोटी सी दुकान और कभी बस सड़क किनारे खड़े होकर की गई बातचीत ही काफी होती है। बातें भी कैसी, कभी भविष्य के सपने, कभी बीती हुई शरारतें और कभी ऐसी हंसी जिसका कोई खास कारण ही नहीं होता। इन पलों में मोबाइल की स्क्रीन

पीछे छूट जाती है और सामने होते हैं अपने लोग। और यही छोटी छोटी मुलाकातें जीवन की भाग दौड़ के बीच मन को सुकून देती हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा के साथ हम इस सफर को जारी तो रखेंगे ही और साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे कुछ गीतों को भी। तो चलिए, कार्यक्रम में चर्चा का ये सिलसिला अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी पुण्यतिथि। दोस्तों, काजी नजरुल इस्लाम जी का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे कवि की तस्वीर उभरती है जिसकी कलम में विद्रोह भी था और प्रेम भी, संघर्ष भी था और इंसानियत की गहरी पुकार भी। वे केवल कवि नहीं थे बल्कि अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक बेचैनी को आवाज देने वाले ऐसे साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं ने लोगों के भीतर आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। 29 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि हमें उनके व्यक्तित्व और विचारों को याद करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, नजरुल इस्लाम जी ने अपने लेखन के माध्यम से अन्याय, शोषण और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी दृष्टि में इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या समुदाय से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से होती थी। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम और सामाजिक समानता की भावना बार बार दिखाई देती रही। उनके लिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, वह समाज को जगाने और उसे बेहतर बनाने की शक्ति था। उनका जीवन भी दोस्तों संघर्षों से भरा रहा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ना, लिखना और अपने विचारों को व्यक्त करना कभी भी नहीं छोड़ा। उनकी कविताओं और गीतों में एक तरफ आजादी की ललक थी तो दूसरी तरफ आम आदमी के दुख दर्द के प्रति गहरी संवेदना। उन्होंने युवाओं को डरकर चुप रहने के बजाय अपने समय की सच्चाइयों को समझने और सही बात के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तब नजरुल इस्लाम जी के विचार और भी प्रासंगिक लगते हैं। समाज में दोस्तों जब भी नफरत, भेदभाव या असमानता दिखाई दे हमें उनकी मानवीय सोच याद आनी चाहिए। दोस्तों, हमारे लिए उनका जीवन यह संदेश देता है कि अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें बल्कि उसका उपयोग समाज के हित में भी जरूर करें। दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम उनकी तरह इंसानियत, समानता और भाईचारे को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उनकी कलम की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह लोगों को जोड़ती थी, आपस में प्यार से बनाए रखती थी। आज हमें भी शब्दों, विचारों और व्यवहार के जरिए समाज में वही जोड़, वही मजबूती उत्पन्न करना है।

0: दोस्तों कार्यक्रम में चलिए अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, क्योंकि आज है उनकी जयंती। जी हाँ, भारत में हॉकी की जब बात हो और मेजर ध्यानचंद जी का नाम ना आए, ऐसा शायद ही संभव है। दोस्तों वे केवल एक महान खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि भारतीय खेल प्रतिभा और अनुशासन के ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने दुनिया के सामने देश का गौरव बढ़ाया। 29 अगस्त को उनकी जयंती पर पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हमें सिर्फ एक महान खिलाड़ी को याद करने का अवसर नहीं देता दोस्तों, बल्कि खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की भी प्रेरणा देता है। दोस्तों ध्यानचंद जी की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से निखारा है। मैदान में गेंद पर उनका नियंत्रण इतना शानदार था कि लोग उन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहने लगे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने शानदार खेल से देश को गौरवान्वित किया। उनकी उपलब्धियां बताती हैं दोस्तों कि प्रतिभा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य भी उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों चलिए इसी क्रम में वार्ता सुनते हैं। विषय है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और वार्ताकार हैं अंकिता विश्वकर्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता विश्वकर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। जब भी भारतीय खेलों के इतिहास में उन महान खिलाड़ियों की बात होती है जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को भारत की ओर देखने के लिए मजबूर किया, तो मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे पहले याद आता है। उन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहा गया। यह नाम केवल उनकी खेल प्रतिभा की वजह से नहीं मिला था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उनके हाथों में हॉकी की स्टिक आते ही मैदान जैसे उनकी भाषा समझने लगता था। गेंद उनके साथ इस तरह चलती थी मानो वह उनसे अलग हो ही नहीं सकती। उनकी कहानी सिर्फ एक महान खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि अनुशासन, समर्पण, विनम्रता और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की कहानी है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। उनका बचपन ऐसे समय में बिता जब भारत स्वतंत्र नहीं था और देश की अपनी पहचान के लिए संघर्ष जारी था। उस दौर में खेल के मैदान पर भारत का नाम रोशन करना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। ध्यानचंद ने हॉकी को सिर्फ खेल नहीं समझा, उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया और अपनी मेहनत से इसे ऐसी ऊंचाई दी कि दुनिया भारतीय हॉकी की प्रतिभा को सलाम करने लगी। दोस्तों उनके जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनकी महानता के पीछे कोई दिखावा नहीं था। आज जब सफलता के साथ प्रसिद्धि, प्रचार और चर्चा भी जुड़ जाती है, उस समय ध्यानचंद अपनी उपलब्धियों को लेकर बेहद सहज रहते थे। वे मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में विश्वास रखते थे। उनके लिए तालियां लक्ष्य नहीं थीं, देश के लिए जीत की लक्ष्य थी। कहा जाता है कि रात के समय भी वे अभ्यास किया करते थे और इसी वजह से उनके नाम के साथ चंद जुड़ गया। हालांकि उनके जीवन से जुड़ी कई लोकप्रिय कहानियां समय के साथ लोगों के बीच अलग अलग रूपों में कही गई हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, उनका अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण असाधारण था। वे जानते थे कि प्रतिभा आपको शुरुआत में आगे ले जा सकती है, लेकिन उसे महानता तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों उनकी हॉकी की कला देखकर दर्शक अक्सर हैरान रह जाते थे। गेंद उनकी स्टिक से जैसे चिपकी रहती थी। वे विरोधी खिलाड़ियों के बीच से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते और गोल करने का अवसर तैयार कर देते। उनके खेल में तेजी थी, लेकिन उससे ज्यादा नियंत्रण था। वे केवल खुद गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि पूरी टीम खेल को बेहतर बनाने वाले खिलाड़ी थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। यह भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और ध्यानचंद इस सफलता के प्रमुख सितारों में शामिल थे। इसके बाद 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी भारत के स्वर्ण पदक जीता। 1936 में बर्लिन ओलंपिक आया और इस बार ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत ने फिर स्वर्ण पदक जीता। लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम का स्वर्णिम प्रदर्शन उस दौर की भारतीय खेल प्रतिभा का प्रमाण था। दोस्तों, 1936 के बर्लिन ओलंपिक की उनकी कहानी आज भी भारतीय खेल इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय मानी जाती है। ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी खेल शैली और गेंद पर नियंत्रण ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान खींचा। उस समय भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर तिरंगे के गौरव को अपने प्रदर्शन के माध्यम से महसूस कराते थे, तो वह केवल एक खेल जितना नहीं था, वह करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला क्षण था। ध्यानचंद की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके खेल को देखने वाले लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां प्रचलित हो गईं। एक लोकप्रिय किस्सा यह भी है कि उनके स्टिक में कोई विशेष जादू है और इसी वजह से उनकी स्टिक की जांच तक करवाई गई। यह कहानी भले ही लोक कथा का रूप ले चुकी हो, लेकिन इससे उस दौर में उनके खेल के प्रति लोगों की हैरानी और आकर्षण का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। असली जादू उनकी स्टिक में नहीं, उनके अभ्यास, एकाग्रता और खेल की समझ में था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की सबसे बड़ी खूबी केवल उनका शानदार खेल नहीं था, वे अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि खिलाड़ी का जीवन केवल मैदान पर दिखाई देने वाले कुछ मिनटों तक सीमित नहीं होता, उसके पीछे घंटों की मेहनत, अभ्यास, संयम और आत्मनियंत्रण छिपा होता है। यही वजह है कि उनका जीवन आज भी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा को अहंकार नहीं, विनम्रता की जरूरत होती है। इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी वे सरल बने रहे, यही सादगी।

0: उनकी महानता को और बड़ा बना देती है। वे जानते थे कि एक खिलाड़ी की असली पहचान उसके पदक या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके खेल व्यवहार और चरित्र से होती है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का योगदान केवल भारतीय हॉकी तक सीमित नहीं था, उन्होंने भारतीय खेलों को दुनिया के मंच पर सम्मान दिलाया। उनके खेल ने यह साबित किया कि भारत के खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। उनके समय में खेल सुविधाएं आज जैसी नहीं थी, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने जिस स्तर की उपलब्धियां हासिल की वह अपने आप में अद्भुत है। 29 अगस्त को उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल ध्यानचंद को याद करने का दिन नहीं है बल्कि खेलों के महत्व को समझने का अवसर भी है। खेल हमें केवल स्वस्थ नहीं रखते बल्कि अनुशासन, टीम भावना, धैर्य, नेतृत्व और हार के बाद फिर से उठ खड़े होने की ताकत भी देते हैं। आज जब युवा खेलों में नए अवसर देख रहे हैं तब ध्यानचंद की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने हमें बताया है कि किसी भी क्षेत्र में महान बनने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, प्रतिभा को दिशा देने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत को निरंतर बनाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए और सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहने के लिए विनम्रता चाहिए। दोस्तों, उनका जीवन एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी अपने साथ अपनी टीम की उम्मीदें नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाएं लेकर चलता था। जब भारतीय हॉकी टीम जीतती थी तो उस जीत की खुशी केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहती थी, वह हर समय उस भारतीय के चेहरे पर दिखाई देती थी जो अपने देश को दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा दिखना चाहता था। ध्यानचंद की कहानी पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है, आखिर किसी खिलाड़ी को महान क्या बनाता है? केवल उसके गोल, पदक, रिकॉर्ड शायद नहीं। महान वह बनाता है जो अपने हुनर को देश की प्रतिष्ठा से जोड़ देता है। ध्यानचंद ने यही किया, उन्होंने अपने खेल को अपनी पहचान नहीं बल्कि देश की पहचान बनाने का माध्यम बनाया। दोस्तों, उनकी उपलब्धियों को याद करना आसान है लेकिन उनके पदम चिन्हों पर चलना कठिन है। उनके रास्ते में चमक से ज्यादा पसीना था, तालियों से ज्यादा अभ्यास था और सफलता से पहले वर्षों का अनुशासन था। यही कारण है कि आज भी उनका नाम लेते ही मन में सम्मान की भावना पैदा होती है। मेजर ध्यानचंद हमारे लिए केवल अतीत के महान खिलाड़ी नहीं है, वे उस सोच का प्रतीक हैं जिसमें लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत ईमानदार हो और सफलता का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित न रहे। उनके जीवन को याद करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि देश के लिए गौरव केवल सीमा पर या किसी बड़े पद पर रहकर ही नहीं कमाया जा सकता। एक खिलाड़ी अपने खेल से, एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से, एक कलाकार अपनी कला से और एक नागरिक अपने अच्छे कर्मों से देश का नाम ऊंचा कर सकता है। आज के युवाओं के सामने अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही दिशा देने की है। अगर हम ध्यानचंद की तरह अपने काम के प्रति ईमानदार रहें तो चाहे हमारा क्षेत्र खेल हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, हम अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भरोसा देती है कि साधारण शुरुआत से भी असाधारण मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनके पदम चिन्हों पर चलने का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना, नियमित अभ्यास करना, हार से निराश ना होना और जीत मिलने पर अहंकार से दूर रहना। युवा खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, फिटनेस और अनुशासन को अपनाएं और अपनी प्रतिभा को देश हित से जोड़ें। मैदान चाहे कोई भी हो, पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे, विषय था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और वार्ताकार थी अंकिता विश्वकर्मा। दोस्तों, परमाणु शक्ति का नाम सुनते ही हमारे सामने विज्ञान, तकनीक और सुरक्षा की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को समझना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, 29 अगस्त को मनाए जाने वाला परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को यही याद दिलाता है कि परमाणु परीक्षणों के मानवीय और पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह दिन परमाणु हथियारों से जुड़े खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शांतिपूर्ण दुनिया की आवश्यकता पर विचार करने का अवसर देता है। दोस्तों, विज्ञान ने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक रास्ते खोले हैं। परमाणु विज्ञान का उपयोग ऊर्जा, चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन जब इसी तकनीक का इस्तेमाल विनाशकारी हथियारों के विकास और परीक्षण के लिए किया जाता है तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। परमाणु परीक्षणों का असर केवल परीक्षण स्थल तक सीमित नहीं रहता, इससे पर्यावरण और मानव जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इस दिन की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि विज्ञान की शक्ति के साथ विवेक और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। दुनिया में शांति केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। आम नागरिक और विशेष रूप से युवा भी शांति की संस्कृति को मजबूत करने में भूमिका अपनी निभा सकते हैं। दोस्तों, युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनाने के साथ साथ यह समझना भी होगा कि तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाना होना चाहिए। आज की दुनिया में देशों के बीच संवाद, सहयोग और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए खोजा जा सकता है। युद्ध और विनाश किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते, इसीलिए परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध यह दिवस हमें शांति, संयम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में सोचने का अवसर देता है। दोस्तों, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले सही जानकारी हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। विद्यालयों में शांति, विज्ञान और वैश्विक जिम्मेदारी पर चर्चा हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के बजाय जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाए। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मजबूत देश वही नहीं होता जिसके पास बड़ी सैन्य ताकत हो, बल्कि वह भी मजबूत होता है जो अपने नागरिकों को सुरक्षा और शिक्षा और साथ ही साथ शांतिपूर्ण भविष्य दे सके। दोस्तों, परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें एक सरल लेकिन गहरी बात याद दिलाता है। विज्ञान की असली सफलता विनाश की क्षमता बढ़ाने में नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित बनाने में है। यही सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की नींव रख सकती है।
2: किधर है?
3: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
2: ये तो झटपट काम है।
3: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
3: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
4: RBI कहता है
5: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: दोस्तों, नशा किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, इसका असर धीरे धीरे पूरे परिवार, पूरे समाज और आखिरकार देश पर जरूर पड़ता है। शुरुआत अक्सर छोटी सी जिज्ञासा या दोस्तों के दबाव से होती है, लेकिन कब यह आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता यह है कि नशा इंसान की सोच, व्यवहार और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति के सपने, रिश्ते और जिम्मेदारियां कभी उसकी प्राथमिकता हुआ करते थे, वही धीरे धीरे नशे के आगे कमजोर पड़ने लगता है। परिवार पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। घर में तनाव बढ़ता है, आपसी विश्वास कमजोर होता है और आर्थिक परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। माता पिता अपने बच्चों को इस स्थिति में देखकर परेशान भी होते हैं और कई बार पूरे परिवार को मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। इसीलिए नशे की समस्या को छिपाने के बजाय समय रहते समझना और मदद लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, समाज की बात करें तो नशा अपराध, हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक असुरक्षा जैसी कई समस्याओं को बढ़ा सकता है। जब युवा अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को नशे में खोने लगते हैं, तो इसका नुकसान केवल उनके भविष्य का नहीं होता बल्कि समाज की प्रगति पर भी पड़ता है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनकी क्षमता, उनकी शिक्षा, रोजगार, खेल, विज्ञान, कला और समाज सेवा में लगे तो देश तेजी के साथ प्रगति करता है। इसीलिए नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून या प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे परिवार की, हमारी आपकी जिम्मेदारी है और हमें साथ में मिलकर सभी के लिए जागरूकता बढ़ाने की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बच्चों और युवाओं से खुलकर बातचीत करनी होगी ताकि वे परेशानी होने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में झिझके नहीं। दोस्तों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है इस दिशा में। किसी साथी को नशे की ओर जाते देखकर उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझाएं, उसकी मदद करें और कैसे इसका समाधान निकलेगा इसमें उसकी सहायता करें। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि नशा छोड़ना केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं होती। कई लोगों को पेशेवर मदद और परिवार के सहयोग की, दोस्तों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ताने देने या समाज से अलग करने के बजाय संवेदनशीलता और सहयोग से उसके साथ जुड़ें। आइए हम अपने घर और आसपास ऐसा माहौल बनाएं जहां नशे के बजाय खेल, शिक्षा, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिले। एक स्वस्थ युवा, एक मजबूत परिवार और एक जागरूक समाज, यही मजबूत भारत की असली पहचान है।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो अच्छी आदतें अपनाएंगे, जैसे कि अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी, वही तय करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम युवावाणी से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रानी राजश्री को। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। बहनों नमस्कार, आज दिन है शनिवार और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की बैठक सज चुकी है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सरिता। बहनों गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का इंतजार आपको बेसब्री से रहता है, तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। बहनों कार्यक्रम में गीत संगीत मनोरंजन व्यंजन और स्वास्थ्य से जुड़ी बातें तो होंगी, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी बहनों का हाल समाचार तो ले लें। बहनों आप सब कैसी हैं? अच्छी है ना? और परिवार के सेहत का ध्यान रखते हुए आप अपना भी ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आपकी सेहत से परिवार की खुशियां जुड़ी हुई हैं। बहनों अभी बारिश का मौसम है, ये मौसम तो अच्छा बहुत लगता है। चारों तरफ हरियाली, धुला हुआ साफ आसमान, झूमते पेड़ पौधे, लेकिन इस मौसम में बीमारियां भी आपके घर दस्तक दे सकती हैं। जरा सी सावधानी और सतर्कता से हम इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। खासकर अपने भोजन पर, या जितनी पौष्टिक होगा भोजन हम उतने ही सेहतमंद भी होंगे। बहनों स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। परिवार की खुशहाली और समृद्धि का आधार केवल आर्थिक संपन्नता नहीं, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य और ऊर्जावान होना भी है। स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे घर की रसोई केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की पाठशाला है। यदि रसोई में पौष्टिक, संतुलित, स्वच्छ और विविधतापूर्ण भोजन तैयार किया जाए तो परिवार के सदस्यों को अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है। इसलिए पोषण से भरपूर रसोई परिवार की सेहत केवल एक विचार नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यक शर्त है। पोषण का अर्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में प्राप्त होना। हमारे शरीर को ऊर्जा वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा रोगी से रक्षा, जो हमारे शरीर को अनेक रोगों से रक्षा करते हैं, इसके लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल प्रमुख हैं। बहनों कोई एक खाद्य पदार्थ शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। जैसे सिर्फ रोटी ही खा लिया या सिर्फ चावल ही चावल खा लिया तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते। कितने लोग कहते हैं कि हमें तो दाल पसंद नहीं है, हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उनमें भी तो गुण है, उनमें भी तो प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी करते हैं। अगर ये हम सारी चीज़ें ना खाएं, जैसे दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल, इन सब की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कमियां हमारे शरीर में रह जाएंगी और हम बीमारी से घिर जाएंगे। बहनों संतुलित आहार इसे कहते हैं, संपूर्ण थाली को हम संतुलित आहार कहते हैं। ये सभी आयु के लोगों को पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सके। बहनों रसोई परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की शुरुआत रसोई से ही शुरू होती है। सिर्फ पेट भरना ही पर्याप्त नहीं, भोजन शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा करें, ये अधिक महत्वपूर्ण है। और साथ ही बहनों भोजन की पौष्टिकता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि उसे कैसे तैयार करते हैं। बहनों सब्जियों को बहुत देर तक पकाने से कुछ पोषक तत्वों की मात्रा कम या खत्म हो जाती है, इसलिए आवश्यकता से अधिक पकने से उन्हें बचना चाहिए। बहनों स्वस्थ रसोई का संबंध केवल पोषण

0: शिक्षण से नहीं बल्कि जिम्मेदार भोजन व्यवस्था से भी है। आवश्यकता से अधिक भोजन बनाना या उसे फेंक देना संसाधनों की बर्बादी है। एक कुशल गृहिणी को परिवार के सदस्यों के अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए। इससे आपके खर्च कम होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तभी तो बहनों कहा जाता है कि परिवार की सेहत का निर्माण किसी अस्पताल या दवा की दुकान से नहीं बल्कि घर की रसोई से भी होता है। पोषक से भरपूर रसोई केवल स्वाद नहीं परोसती बल्कि स्वस्थ भविष्य की नींव रखती है। इसलिए आज की रसोई में लिया गया प्रत्येक संतुलित और जागरूक निर्णय आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य में निवेश है। इसीलिए बहनों कहा जाता है कि स्वच्छ खाइए और स्वस्थ रहिए। तो अब चलते हैं अपनी भेंटवार्ता की तरफ। सुन लेते हैं दांतों की आम समस्याएं और समाधान, और इसके बारे में जानकारी दे रही हैं हमें डॉक्टर दिव्यांशी सोनी, जो एक दंत चिकित्सक हैं और इनसे ढेर सारी बातें कर रही हैं और जानकारी लेकर आई हैं बबीता बत्रा। तो चलिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता, दांतों की आम समस्याएं और समाधान।
1: हम सब चाहते हैं कि हमारी मुस्कान हमेशा खूबसूरत और स्वस्थ बनी रहे, लेकिन अक्सर हम दांतों की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में दंत चिकित्सक डॉक्टर दिव्यांशी सोनी जी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले दांतों की समस्याओं के बारे में जानते हैं आपसे कि ये और क्या उम्र के साथ बदलती भी हैं?
2: दांतों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है दांतों में झंझनाहट होना।
1: जी,
2: अक्सर सुना होगा कि लोगों के दांत में ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, मीठा लग रहा है। दूसरी समस्या है मसूड़ों से खून आना, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, शायद ब्रश करते हैं खून आता है, नॉर्मल चीज लग गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तीसरा, मुंह से बदबू आना, टेढ़े मेढ़े दांतों का होना या तो दांतों में सड़न होना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि दांत इवन घिस जाना, अगर दांत घिस गए हैं, दांतों के बीच में गैप होना, ये सारी कुछ प्रमुख दिक्कतें हैं जो अभी आम जनता में देखने को मिलती है।
1: जी जी
2: जी।
1: उम्र के साथ मतलब कुछ बदलती है कि छोटे बच्चों में ये चीज ज्यादा है और बड़ों में ये बीमारी ज्यादा है?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दांत की जो पहली सुरक्षा लेयर है, एनामल जिसको कहते हैं, वो ब्रश करने के दौरान वो घिसती ही है। तो उम्र के साथ साथ दांत का पीला होना और दांतों में झंझनाहट होना, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
2: तो ये बच्चों में कम दिखती है, अगर बड़ों में देखे, अगर सब कुछ ठीक है उसके बावजूद दांत घिस जाते, ये बड़ों में ज्यादा देखने को मिलता है।
1: और ये दांत में कीड़ा लगना, इससे बहुत लोग परेशान होते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और कैविटी से बचने के उपाय?
2: देखिए, पहले तो एक ये मिथ मैं हटाना चाहूंगी कि दांत में कोई कीड़ा भी लगता है। दरअसल
1: अच्छा।
2: दांत में किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होता।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जब हम कुछ मीठा या गर्म या तो चटपटा चिपचिपा कुछ खाते हैं तो हमारे दांत की सतह पे चिपक जाता है।
1: अच्छा।
2: फिर हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस शुगर को, उस मीठे को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड अगर लंबे वक्त तक दांत की सतह पे चिपका रहा तो दांतों को गला देता है, जिसकी
1: अच्छा।
2: वजह से कैविटी होती है। तो दांत में कीड़ा लगना ऐसा कुछ होता नहीं, दांत में कैविटी जरूर होती है, वो भी चिपचिपा मीठा खाने की वजह से, अच्छे से ब्रश ना करने की वजह से। सिर्फ ब्रश करना जरूरी नहीं होता, नियमित रूप से 2 मिनट तक 2 टाइम ब्रश करना जरूरी होता है।
1: अच्छा,
2: ठीक है। यदि हम अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रख रहे, हम हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ मीठा चिपचिपा कुछ खा रहे हैं, हमारे मुंह की सफाई नहीं सही से, ये सब बहुत प्रमुख कारण होते हैं कि हमारे मुंह में कैविटी हो जाती है। फिर खाना फंसने लगता है, इसकी वजह से भी कैविटी होती है। अब बचने की बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जाए, बचाव का सबसे बड़ा तरीका यही है कि 2 टाइम ब्रश करें, अच्छे से ब्रश करें, नियमित रूप से अपने मुंह की सफाई रखें, खाना खाने के बाद कुल्ला करें और रात में सोने से पहले फ्लॉसिंग जरूर करें।
1: अच्छा।
2: ताकि जो खाना दांतों के बीच में उपस्थित है वो हट जाए और आराम से आप सो पाए।
1: तो और मान लीजिए वो कैविटी हो ही गई, तब क्या किया जाएगा?
2: अगर कैविटी हो गई है तो आपको पहले तो सेंसेशंस फील होंगे, झंझनाहट महसूस होगी,

0: ठंडा पानी, हमने जैसे ही ठंडा पानी पिया वैसे ही झंझनाहट हुई और जैसे हमने अंदर गटक लिया वो ठीक हो जाता है, उस समय लग जाता है। तो ये हमारी बॉडी हमें अलार्म देती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अब एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें अपने डेंटिस्ट को मिलना है। आप अपने डेंटिस्ट से तब मिलिए और उसका फिर आपको सही उपचार पता लगेगा ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े ना और दर्द में कन्वर्ट ना हो। जी,
1: एक प्रश्न मेरा ये भी है कि अगर अब मसूड़ों की हम बात करते हैं आपसे, तो मसूड़ों से खून आना और कई बार स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों में ना, सूजन सी लगनी लगती है, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली बात फिर वही है कि अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो जाहिर सी बात है दांत को कवर कौन करता है? मसूड़ा करता है। तो अगर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो कहीं ना कहीं वो मसूड़ों में सूजन आएगी, और अगर मसूड़ों में सूजन है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ये काली पीली गंदगी के जमा होने की वजह से तो नहीं है। टेढ़े मेढ़े दांत यदि होते हैं तो उनकी सफाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से भी मसूड़े सूजते हैं, ब्लीड करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमने ब्रश किया चोट लग गई होगी इसलिए खून आ रहा है, ये तो नॉर्मल है। पर अगर सिर्फ एक ही जगह मसूड़े से खून आ रहा है और बाकी जगह से नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि वहाँ के मसूड़े ऑलरेडी सूजे हुए थे, तो उसकी जांच करना जरूरी है। फिर पूरा मामला ही इसके इर्द गिर्द घूमता है कि हम अपनी मुंह की सफाई कितना अच्छे से रख रहे हैं। और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्लॉसिंग करना।
1: अच्छा,
0: रात में सोने से पहले एक बार फ्लॉसिंग करना बहुत जरूरी है। फिर मसूड़े जो सूजते हैं, इनका एक और बहुत प्रमुख रीजन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज।
1: अच्छा।
0: अगर आपको मधुमेह है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, 200 तो तब भी ठीक, लेकिन 250 300 के ऊपर अगर आपका शुगर है तो कहीं ना कहीं ये तय बात है कि आपके मसूड़े वो ढीले होंगे, फिर ये पायरिया का एडवांस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए फ्लॉसिंग करना रेगुलरली।
1: अच्छा।
0: और फिटकरी के कुल्ले,
1: हाँ।
0: चुटकी भर फिटकरी आधे कप पानी में लेकर 10 दिन में एक बार।
1: अच्छा।
0: ये किया जा सकता है, इससे मसूड़े अच्छे होते हैं, टाइट
1: तो
0: होते
1: मतलब ऐसा नॉर्मल पानी या गुनगुना
0: पानी,
1: अच्छा।
0: बहुत गर्म हमें नहीं चाहिए, गुनगुना नॉर्मल पानी में चुटकी भर फिटकरी डाल के कुल्ला किया जा सकता है, तो उससे मसूड़े थोड़े स्वस्थ होते हैं। बाकी ब्रशिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है कि क्यों खाना फंस रहा है तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, तो बहुत शुरुआती स्टेज में आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है।
1: और डॉक्टर दिव्यांशी जी, अक्सर दांतों में जैसे हमने शुरू में आपने बात की कि वो ठंडा गर्म लगता है,
0: जी जी,
1: क्यों लगता है और इसको कम करने के लिए क्या उपाय है?
0: कि ठंडा गर्म लगने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है, अगर हम बच्चों में या फिर यंगस्टर्स में बात करें, 30 साल 35 40 साल तक के जो लोग होते हैं, तो वो जब ध्यान नहीं देते हैं अपने दांतों की सफाई पे और खाना वही चिपका रह जाता है और या तो खाना फंसता है तो वहाँ पे कैविटी हो जाती है। इसकी वजह से खाना फंसते फंसते वहाँ पे कैविटी हुई, दांत की पहली जो लेयर है, जो पहली सतह है, इनामल जिसको कहते हैं, जो हमारे दांत को प्रोटेक्शन देती है, वो घिस जाती है, और जैसी सेकेंड लेयर आएगी झंझनाहट शुरू हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: तो इससे बचने के लिए पूरा ही फिर वही वाली बात है कि आप कितनी अच्छी मुंह की सफाई रख रहे हैं, कितना आप ध्यान दे रहे हैं मेरा खाना कहीं फंस तो नहीं रहा, और अगर फंस रहा है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस पे अगर हम ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी लंबे टाइम पे। अब अगर हम बुजुर्ग लोगों में बात करें तो उनकी दांत की पहली लेयर, जाहिर सी बात है हम 365 दिन ब्रश करते हैं, जिनके दांत भी अच्छे हैं लेकिन लेयर घिस गई है, तो उनकी जब सेकंड लेयर आती उनको झंझनाहट होती है, तो उन केसेस में हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट हम रिकमेंड करते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वास्तव में यही प्रॉब्लम थी कि कहीं फिर सड़न हो रखी है या कुछ और मामला है, तो इस बात को तय करना पड़ता है।
1: जी जी
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि ये RCT ये कब करानी पड़ती है?
0: जी देखिए, RCT मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों के नसों का इलाज। जब हमारे दांत में खाना फंस रहा है, हमें झंझनाहट हुई, ठंडा पानी लगा, हमने ठंडा पानी पिया और तुरंत आराम मिल गया, जैसे ही अंदर गया 10 सेकंड बाद आराम मिल गया, हमने इग्नोर किया, हमने उसको 6 महीने इग्नोर किया, अब हमको गर्म पानी भी लगने लगा है और मीठा भी लगने लगा है, और जब मीठा और गर्म लग रहा है तो वो एक घंटे तक वो प्रकरण चलता है, वो झंझनाहट रहती मीठा और गर्म खाने के बाद, पर अब ठंडा पानी से आराम मिल रहा होता है, तो हमें लगता है कि जैसे ठंडा पानी से आराम मिल गया वैसे गर्म से भी आराम मिल गया, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि अब गर्म से या फिर मीठे से झंझनाहट है, मतलब कि आपकी जो दांत की नस है वो इरिटेट हो रही है, उसको अब दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, ये दिक्कत अब एक एक घंटे तक चल रही है। दांत की समस्या हमेशा ही अगर एक बार शुरुआत हो गई, दांत में अगर सड़न शुरुआत हो गई है तो जब तक दांत की सड़न को हम अच्छे से निकाल ना दे वो ठीक नहीं होती। लेकिन अगर हम इग्नोर करें, 6 महीने और बीत जाएं, तो अब दर्द उठता है। जब दांत की नस पूर्णतः खुल जाती है तब दांत में दर्द होता है और उस दर्द का इलाज उस नस को निकाल के उसको क्लीन करके उस नस के इलाज से ही होता है, जिसको हम RCT कहते हैं। तो कभी भी कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी केस सीधा RCT में नहीं जाता है, वो एक मरीज के बहुत लंबे वक्त तक एक इग्नोरेंस की वजह से वो केस RCT में बदलता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, ताकि अगर शुरुआत में ही दिक्कत पता लग जाए तो इतना आगे तक परेशानी होगी ही नहीं।
1: जी, और अक्सर बच्चों में देखते हैं दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसका क्या कारण है और क्या हर उम्र में वो ठीक हो सकते हैं?
0: देखिए, दांत टेढ़े मेढ़े होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख वजह तो ये है कि जो दूध के दांत है या तो जल्दी झड़े नहीं, अपने समय पे झड़े नहीं, या तो अपने समय पे वो आए नहीं, जिसकी वजह से जो उनके नीचे दूध के दांत के नीचे होते हैं हमारे परमानेंट दांत, उन वो नहीं आ पाते, वो अपनी जगह बदलते हैं, जगह ढूंढते हैं और उसकी जगह आते हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांत जो बच्चों में हैं उनकी सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि दूध के दांत अपने समय पे या तो निकले नहीं या तो वहां पे रह गए। अब टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज 7 साल की उम्र से कराया जा सकता है।
1: अच्छा,
0: 7 साल में अगर हमें लग रहा है कि बच्चे के दांत कुछ ठीक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। हो सकता है एक छोटा सा अप्लायंस, एक मुंह में पहनने के लिए एक सामान देंगे जो कि आसान होता है बच्चों के लिए भी पहनना, और उससे उनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पे चले जाएंगे। हम उनमें ऐसा फोर्स डालते हैं कि दांत अपने आप उस जगह पे आ जाएंगे,
1: अपनी जगह पे आ जाएंगे। जैसा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से जाना कि दांतों की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय पर सही देखभाल और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर देवयांशी सोनी जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, विषय था दांतों की आम समस्याएं और समाधान, और डॉक्टर दिव्यांशी सोनी से बात कर रही थी बबीता बत्रा। डॉक्टर सोनी जी ने हमें कितनी ढेर सारी दांतों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये अपनी दैनिक दिनचर्या में ये ध्यान भी देंगे कि हमें अपने दांतों की हिफाजत और सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहनों, स्वस्थ रहने के लिए भोजन जितना आवश्यक है, खेल भी उतना ही आवश्यक है। खेल से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। बहनों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह हर वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वे भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे और उनके खेल कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बहनों, इस दिन देश भर में खेलों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। बहनों, खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी समय देना आवश्यक है, जैसा कि मेजर ध्यानचंद जी ने किया। वे 1928, 1932 और 1936 में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने अपने पूरे खेल जीवन में 400 से भी अधिक गोल किए। बहनों, उनकी हॉकी की कला ऐसी थी कि मानो उनकी हॉकी स्टिक से गेंद चिपक सी जाया करती थी। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत तो बनाते हैं, साथ ही हमें हार के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस खास दिन राष्ट्रपति भवन में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। बहनों, राष्ट्रीय खेल दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करें। अच्छे खिलाड़ी बनने के साथ साथ खेल भावना और अनुशासन का भी पालन हमें करना चाहिए। बहनों, हमारी चर्चा भी आगे

बहनों, गाना तो आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो सखी सरिता। बहनों, आंखें हैं अनमोल हमारी, इनसे दुनिया लगती बहुत ही प्यारी। बहनों, आंखें हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, इनके बिना हम सुंदर संसार को देख नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी आंखों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और किताब को आंखों से उचित दूरी पर रखना चाहिए। बहनों, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर ये लगातार देखते समय कुछ कुछ समय पर आप आंखों को आराम दे सकते हैं। बहनों, गंदे हाथों से हमें अपनी आंखों को नहीं छूना चाहिए और अगर आंख में कुछ मिट्टी या धूल के कण चले भी गए हों तो उन्हें साफ पानी से धोना चाहिए और हरी सब्जियां, फल, दूध और पौष्टिक भोजन आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक है। यदि आंखों में दर्द, खुजली या आंखें लाल हो तो या कोई और भी अगर परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि आंखें अनमोल हैं। थोड़ी सी सावधानी और अच्छी आदतों से हम अपनी आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। बहनों, कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। अपनी रेडियो सखी सरिता को दीजिए इजाजत। बहनों, नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ है हम विकास राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन में देवरिया जिला में 305 करोड़ रुपया लागत का 80 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह मौका पर श्री योगी कहने कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश विकास का नया आयाम स्थापित कर लगातार आगे बढ़ रहा हो। यह सुशासन हो जब गरीब के बिना मंगले राशन, बिना मंगले बिजली, आवास और नौजवानों के बिना कुछ कहले रोजगार मिल जाए।
1: आज जगह जगह नौकरियां निकल रही हैं। अब तक 9.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। अगले एक वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। 35,000 केवल पुलिस की भर्ती के हैं और 4,000 सब इंस्पेक्टर के हैं। 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती हो रही है, उसकी स्क्रीनिंग की कार्रवाई चल रही है। यूपी टीएलटी की परीक्षा में 13 लाख नौजवानों ने पास किया है। तो नौजवानों के लिए नौकरी से खजाना निकलने वाला है।
0: बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर में 130 करोड़ रुपया लागत के 170 विकास परियोजना का लोकार्पण करने के साथ ही बसारतपुर में कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरे वालों की संख्या 626 हो गई हो, जबकि 2,000 से बेसी लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित

0: राहत और बचाव अभियान जारी हो। इस बीच भारत बाढ़ प्रभावित नेपाल के मानवीय सहयोग तेज कर दे हो। मानवीय सहायता सामग्री के साथ है तीसरा विमान कालीसंध्या काठमांडू पहुंचल। विदेश मंत्रालय बतौले हो कि 320 भारतीय नागरिकन से अभी ये संपर्क नहीं हो पौले हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल नई दिल्ली में मीडिया से बतियावत कारण कि भारतीय मूल का करीब 100 जने ऑडियो लॉगिन से संपर्क नहीं हो पौले हो। एगो रिपोर्ट।
1: जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 01-230-88-71 और 01-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +9779853186807+9779701705000 और +9798031-6117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142-84905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलिया में बाढ़ प्रभावित बांसडीह, बैरिया और बलिया सदर विधानसभा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर मुख्यमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों का कुशल छिन्न जनलें आ उन्हें बाढ़ राहत सामग्री बटलें। इस मौके पर श्री योगी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार हर गरीब, नौजवान, माता बहन और अन्नदाता किसान बदे पुरहर संवेदनशीलता आ ईमानदारी के साथ उनके हितम बदे कार्य कर रही हो। प्राकृतिक आपदा के इस संकट में हर बाढ़ पीड़ितन के सुरक्षा का संकल्प के साथ कार्य कर रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने सवेरे 11 बजे आकाशवाणी का मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करी हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां कड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सीनियर सिटीजन होम का उद्घाटन करी हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री कहा कि भारत में पितृदेवो भव और मातृदेवो भव का परंपरा रही हो, उनके सेवा से बहन कौनों पुण्य कार नहीं हो सकेला। केंद्र सरकार चीनी का समय से उपलब्धता सुनिश्चित करे बदे मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली की जगह पर अगला महीना से पखवाड़ा के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करे का फैसला लिया गया हो। यानी चीनी मिलन के पहला हफ्ता में कम से कम 40% आवंटन और सेल्स मात्रा अगला हफ्ता में बेचे के हुई। प्रदेश का कई जिलों में हो रहा बरखा और नदियों में पानी का बैराज का पानी छोड़ल गेले के नाते कई नदी उफान पर हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रहा हो। प्रशासन की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों के सुरक्षित जगह पर पहुंचावल जा रहा हो। बनारस में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज कर गई हो। केंद्रीय जल आयोग के हिसाब से गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा हो। हालत को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हो। और नेपाल के पहाड़ियों में हो रही लगातार बरखा और भोटे कोसी त्रिशूली नदी में बढ़ रहा पानी और मलबा के बीच नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़क देने के बाद कुशीनगर जिला में नारायणी नदी अब खतरा के चिन्ह के नीचे बह रहा हो। जिला का खड्डा और कंकोही राज तहसील क्षेत्र का दियारा और किनारे का गावन में विशेष चौकसी बरतक जा रही हो। समाचार पूरा भेल। नमस्कार।
2: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवानी केन पुत्री स्वर्गीय हरि किशन केन निवासी 8/395 लोनी गेट छोटा बाजार शाहदरा दिल्ली जो मुर्धवा खाड़पाथर सोनभद्र से दिनांक 25 मई

2026 से लापता है। होलिया इस प्रकार है, उम्र 28 वर्ष, लंबाई 147 सेंटीमीटर। होलिया गेहुआ रंग, गोल चेहरा, मजबूत जिस्म और दोहरी बदन है, पहनावा गुलाबी रंग का सूट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मीना देवी पत्नी दूधनाथ बिंद निवासी ग्राम करवनिया थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र जो दिनांक 15/7/2026 से लापता है। होलिया इस प्रकार है। उम्र 32 वर्ष लंबाई 4 फीट 9 इंच होलिया इस प्रकार है। गोरा रंग लंबा चेहरा एकहरी बदन जिस्म है पहनावा साड़ी पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुना जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों ही कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 6:50 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसका अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। पुराने गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जाएगा रात्रि 9:15 पर। सबरस आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। सुगम संगीत का लुत्फ आप लेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रहेगा रात्रि 8:15 पर। अब से कुछ ही देर बाद ग्रामीण भाई 6:10 पर अपना कार्यक्रम सुमंगल सुनेंगे ग्राम जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे ग्राम जगत कार्यक्रम में तीरंदाजी प्रशिक्षक त्रियरा स्टेडियम सोनभद्र की सुमंगला शर्मा से सुरसरी द्विवेदी की भेंट वार्ता। विषय रहेगा 1 घंटा खेल के मैदान में। साथ ही देसी मधुमक्खी पालन की चुनौतियों और समाधान विषय पर मधुमक्खी पालक आकाश कुमार से जगत नारायण की बातचीत सुनी जाएगी और इसमें आप आनंद लेंगे रामचंद्र दुबे के गाये लोकगीत का। यही जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का उभरा केंद्र 102.7 FM पर प्रस्तुत है ग्रामीणों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: भोला भैया राम राम हो।
0: राम राम गुलाब बहन।
1: और बताओ क्या हाल समाचार आपको?
0: बस इस समय देखते हैं कि पानी बरसात के मौसम हो और इसने में जौन बाकी खेती पाती तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जौन बाकी बचवा लोगन के जौन खेल में प्रतिभाग करे के बात आवला। अभी जैसे 15 अगस्त बीतल, ओमे कितना लोग जौन बाकी खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर के ओमे भी पुरस्कार पलन लो।
1: और छोटवार बच्चों में इतना जागरूकता हो रहा हो कि उनके बस जाने भर का देरी है कि हाँ खेल प्रतियोगिता होत बा या कुछ ऐसा काम होत बा, तो समझ लगे घरे में अपने बता के पहले से ही तैयारी करे लगलन।
0: बिल्कुल,
1: और
0: देखा
1: बहुत बढ़िया भी लगल बच्चों में, कहे कि ये सब चीज बच्चों का जो जागरूकता है ये हम लोगों के भी समझे के चाहिए, उनके जो जागरूकता बा उनके लोगों के और बढ़ावा देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल, और खेल भी खेल में अगर जन बाकी अगर तीरंदाजी की बात कर जाए तो निश्चित रूप से जिसे आचार्य द्रोण अर्जुन के और ये सब जितना भी कौरव पांडव रहन उन लोग के जन बाकी शिक्षा दिले रहन, तो उनमें जन बाकी धनुष बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर प्रतियोगिता होला उनमें जो विजेता होला तो हमें या तो अर्जुन पुरस्कार मिली या तो फिर की द्रोण पुरस्कार मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपका जो कहानी बा ना आपका इशारा भा हम समझे थे कि आज पंचायती में आज जन जुटल है सुमंगला जी अपन तीरंदाजी में, मतलब वो प्रशिक्षक है तेरा स्टेडियम का, उनकर जानकारी आज अपने पंचायती में हम लोगों सुनल जाये। साथ में आज के दिन देखा पूरे भारत देश में हो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनावल जात बा, और देखा ये दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के रूप में मनावल जाना।
0: अच्छा, हॉकी खिलाड़ी जो रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा मेजर ध्यानचंद जी के हॉकी का जादूगर भी कहल जाना भैया।
0: क्या बात है।
1: और जे देखा भारत का ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक दिए रहलन भारत देश के, और ये दिन देखा देश में खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ावल जाला, और देखा स्कूल और संस्थान में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन आज के दिन करल जाला।
0: बिल्कुल, जैसे हाँ
1: साथ में देखा है मेजर ध्यानचंद जी देखा 1928 में 1932 में और 1936 में भारत के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिए रहन भारत देश के, और देश में देखा खेलों और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ावे के खातिर पहली बार 2012 में इनके शुरुआत कई गये।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 29 अगस्त के।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तब से जौन बाकी हर साल मनावल जा रहा है। यही में जौन बाकी खिलाड़ी लोगन के राष्ट्रपति के द्वारा जौन बाकी पुरस्कार भी देवल जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में उन्हें पुरस्कृत कर जाला। तो निश्चित रूप से जौन होनहार अच्छा खिलाड़ी, और ये कार्यक्रम ऐसे हर साल मनावल भी जाला कि खिलाड़ी लोगन के उत्साह वर्धन हो सके।
1: बिल्कुल,
0: और उनके जागरूकता खेल के प्रति हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बात बताए तो बिल्कुल अच्छा वाहन हम लोग के हो रहा है
1: एकदम, और जबकि इतना बढ़िया बातचीत जब अगर होत बा तो अपन एक घंटा खेल के मैदान में ये विषय पे जोन सुमंगला शर्मा जोन है तीरंदाजी प्रशिक्षक है तेरा स्टेडियम का, उनसे देखा अपन सुरसे द्विवेदी जी के भेंट मुलाकात भइल, और देखा आज के इतने विशेष अवसर पर इनका विशेष बातचीत हम लोगों ने चले सुनल जाए, फिर आगे बातचीत करल जाए।
0: बिल्कुल सुना
1: चले।
2: साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस, वह दिन जब हम मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हैं और देश के सभी खिलाड़ियों को सलाम करते हैं। इस खास मौके पर आज आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ओलंपियन जिनकी आंखों में लक्ष्य और दिल में बसता है भारत। भारत की प्रसिद्ध तीरंदाज सुमंगला शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ओबरा में। नमस्कार।
3: नमस्ते जी, सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुमंगला जी, आप ओलंपियन में प्रतिभाग करी, अजीम शख्सियत की धनी, खेल के प्रति आपकी शुरुआती प्रेरणा क्या रही और आपने तीरंदाजी ही क्यों चुना?
3: मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि तीरंदाजी विश्व की प्रथम धरोहर है। प्राचीन काल में धनुर्विद्या नाम से जानी जाती थी, तो गुरुकुलों की विद्या हुआ करती थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही पीछे का किस्सा है कि मैं गुरुकुल की छात्रा रही हूँ, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में मैं पढ़ती थी, और वहीं पर ही मेरे भाई भी गुरुकुल में ही पढ़ते थे। तो मेरे भाई ने जब तीरंदाजी शुरू की और उन्होंने विदेश में जाकर पदक जीता तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली, तो तत्काल ही एक दो वर्ष बाद मेरे गुरुकुल में स्टार्ट हुई। तीरंदाजी। योगा और प्राणायाम ध्यान वगैरह सभी करते थे हम ही लोग, लेकिन तीरंदाजी नहीं थी
2: जी।
3: जब तीरंदाजी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि अब मुझे तीरंदाजी करनी है।
2: बिल्कुल, तो इस तरह से आपकी हुई शुरुआत। पर जब आप पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरी, खासकर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आज उस पल को कैसे याद करती हैं?
3: बिल्कुल जी, जब मैंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो इससे पहले मैंने 2001 में आर्चरी स्टार्ट की। एक से लेकर 2004 तक जो मेरी दिनचर्या थी और जो मेरा अभ्यास था, वो एकदम बहुत ही लगन उत्साह से प्रैक्टिस करने का था। तो मैंने इसमें इतनी लगन दिखाई और बहुत ज्यादा मेहनत की कि मैं 3 साल में ही ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहुंची। सभी खिलाड़ी आज भी मेरा उदाहरण देते हैं कि सुमंगला जैसी मेहनत कोई नहीं करता। अगर हम भी, सभी खिलाड़ियों को इतनी लगन से मेहनत करनी चाहिए कि हम जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लें तब तक रुके नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बेशक यह सफर आपका 3 वर्षों का रहा है, पर इसमें तमाम चुनौतियां भी आई होंगी। कभी मनोबल टूटा होगा, कभी लक्ष्य चूका होगा, उन लम्हों में आपने खुद को संभाला कैसे?
3: बस एक ही बात याद आती थी, कुछ करना है। उस समय भी मैंने यही लिखा था, अपनी एक डायरी बनाई थी और एक उद्देश्य लिखा था कि ये मुझे अचीव करना ही है। और उस एम ने मुझे सोने से लेकर जागने तक मुझे हर पल वो याद रहा कि यही आपका अंतिम उद्देश्य है और इसे पूरा करना है। मेरा मकसद था कि मैं ओलंपिक में पदक जीत कर लाऊं। वो किन्हीं कारणों से मैं जीत नहीं पाई, पर मेरा लक्ष्य मैंने अपनी डायरी में लिखा और उस पर मैंने दिन रात काम किया। तो मैं सभी प्रतिभागियों से, खिलाड़ियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी लक्ष्य लें उसके प्रति दृढ़ संकल्प हो जाएं, जिससे कि वो आपका लक्ष्य आपसे दूर ना हो पाए, आप उसे जरूर प्राप्त कर लें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के याद करते हुए हम सब मना रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए आप क्या मानती हैं कि आज के खिलाड़ियों को उनके जीवन से कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए?
3: वाकई में मेजर ध्यानचंद जी तो बहुत ही धन्य पुरुष थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा को इतनी तत्परता से अग्र प्रेषित किया, मतलब दिखाया, दुनिया को दिखाया कि उन जैसा महान हॉकी जादूगर कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। जबकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए, कोई ऐसा विशेष स्टेडियम भी नहीं था, वो सुबह शाम जब देखो तब अपनी रेल की पटरियों पर प्रैक्टिस करते थे अपनी हॉकी और उस बॉल के साथ। वो इतना बैलेंस्ड करते थे प्रैक्टिस करके, उन्होंने इतनी उसमें महारत हासिल कर ली जिससे कि वो आज तक हॉकी के जादूगर बने हुए हैं। मैं उनके जन्मदिन पर सभी खिलाड़ियों से, सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को इतना निखारिए कि सभी कोई आपकी प्रतिभा की तारीफ करे।
2: तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लगन और जुनून निश्चित रूप से हमारे गंतव्य तक ले जाता है। पर आजकल देश भर में खेलों के प्रति जहां जागरूकता बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, वहीं कई युवा जो हमारे ग्रामीण अंचल से हैं, उन्हें साधन संसाधन नहीं मिल पाता है, प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, इस कारण उनकी प्रतिभा दब जाती है और कुशल प्रशिक्षक को न मिलने के कारण वो अपनी प्रतिभा को निखारने से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए आप क्या विचार रखती हैं?
3: यह काम स्कूल के जो प्रशिक्षक हैं उनका काम है कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, जिनका रुझान खेलों के प्रति अत्यधिक है, तो उन बच्चों को वो प्रेरित करें कि आप स्टेडियम जाइए, जहाँ जहाँ खेलों के अच्छे अच्छे केंद्र चल रहे हैं तो वहाँ पर वो उनको भेजें, जिससे कि जो उनकी प्रतिभा छुपी हुई है, जो प्रशिक्षक हैं उनकी प्रतिभा को उजागर करेंगे और वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
2: बड़ी अच्छी बात है। और देखिए, जहाँ एक तरफ हमारे सोनभद्र को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना गया है और जब शिक्षा की कमी है तो उनमें जागरूकता की भी कमी है, इन सब के बावजूद हमारे सोनभद्र में तियरा स्टेडियम, जहां आप बतौर कोच सेवारत हैं, तीरंदाजी के साथ साथ अन्य खेल का भी प्रशिक्षण होता है। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए आपका यह बताना बहुत ही लाजिम है कि तीरंदाजी में रुचि रखने वाले बच्चे जो यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए क्या आवश्यक प्रक्रिया है।
3: सोनभद्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र तीरंदाजी का छात्रावास है। यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले आपको जिला स्तरीय फिर मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने अपने मंडल से फॉर्म भेजना होता है khelsathi.com। तो जब खिलाड़ी वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है और उसके बाद एक प्रतियोगिता रखी जाती है, वो एक स्टेट लेवल की होती है, वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर उनका चयन किया जाता है। जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, अपनी हाई मेरिट प्राप्त करते हैं, उन बच्चों को सरकार हॉस्टल में प्रवेश दिलाती है। सारा खर्चा, यहाँ तक कि रहना, उनका इक्विपमेंट और आने जाने का जो व्यय है वो सभी कुछ सरकार करती है। तो मैं सभी खिलाड़ियों से, सभी अपने

0: देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप सचमुच अपने आप को खेलों में बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और एक घंटा खेल के मैदान में, जो हमारे खेलों की थीम है इस बार 2025 खेल दिवस की, जो थीम है कि एक घंटा खेल के मैदान में, तो उससे क्या होगा, आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों गतिविधियों में उन्नति होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो जो आपका मुकाम है वो आप बिल्कुल प्राप्त कर लेंगे।
1: सुमंगला जी, इधर विगत कई वर्षों से, विशेषकर कोरोना के बाद से, बच्चों का जो रुचि रुझान है वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। खेल के मैदान तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चा खेल के मैदान में जाए, ताकि प्रशिक्षक उनके अंदर की छिपी प्रतिभा को समझे, निखारे और देश के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उन्हें तैयार करे।
0: इस समय सबसे पहले माता पिता को फोन छोड़ करके बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। उन बच्चों को वो स्टेडियम तक मोटिवेट करें, लेकर जाएं, जिससे कि उनकी फोन देखने की आदत छूट जाए, और जो वो ऑनलाइन वीडियो गेम वगैरह देखते हैं उसकी भी आदत छूट जाए। उससे क्या होगा, उनकी आंखों को नुकसान भी नहीं होगा, और जब वो खेल के मैदान पर जाएंगे, मिट्टी में खेलेंगे, तो उनकी शारीरिक जो
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता
0: वो बढ़ जाएगी, और जो उनका मेंटल संतुलन है वो एकदम एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा घर से निकल के आता है और एक समूह के साथ इकट्ठे होकर जो कोई एक्टिविटी करता है, उससे उसका मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊपर उठा हुआ महसूस करता है। तो सभी माता पिताओं से यही अपील करती हूँ कि आप भी एक घंटा खेल के मैदान में दीजिए, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा आपका अनुकरण करेगा, वो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपके शब्दों से आज सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि खेल के प्रति जो सम्मान है वह और भी गहरा हुआ। हमारी शुभकामना है कि आप और भी आगे ऊंचाइयों तक जाएं और देश को गर्व का हर पल दें। श्रोताओं, खेल सिर्फ जीत या हार नहीं, यह जीवन जीने की कला है। इन्हीं बातचीत के साथ आप हमारे आकाशवाणी में आई। हमारे श्रोताओं को तीरंदाजी से जुड़ी तमाम जानकारी और अपनी बातों से रूबरू कराया, इनके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: जरूर, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सभी एक घंटा खेल के मैदान पर दीजिए, तभी ये खेल दिवस सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते जी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बोला भैया,
5: आग लगा
4: है। देखा कितना बढ़िया जानकारी दे रही है सुमंगला शर्मा जी, तीरंदाजी प्रशिक्षक, तेरा स्टेडियम से, और देखा एक घंटा खेल के मैदान में, और देखा इतना बढ़िया इन पर जानकारी रहा।
5: बिल्कुल,
4: अगर हम लोगों बचपन के या हम लोगों खुद अगर एक घंटा अपने खातिर समय निकाल के खेल के मैदान में जाए, तो देखा हर व्यक्ति के अंदर भैया एक नए गुण छिपल रहा है।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: एक नए खिलाड़ी हर व्यक्ति के अंदर हो रहा,
5: और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी भी है,
4: खातिर भी बहुत ही लाभदायक बा। और देखा कहीं न कहीं अगर हम लोग स्वस्थ रहल चाहते हैं तो इनकर जो जानकारी रह लो ओके अमल मिल।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और साथ साथ खान पान में भी अगर हम लोग जुन बाकी ध्यान दें,
4: बिल्कुल
5: ये पर भी बहुत जुन बाकी आवश्यक बहन, क्योंकि इसमें कृषि कार्य भी हम लोग जो कर रहे हैं,
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: इसमें भी जो है कि बहुत खर्चीला हो रहा है, जहां आय बढ़ावे के रणनीति अपनावल जा रहा है अपने देश में, वही जो बाकी जो महंगा महंगा खाद दवा और कीटनाशक जो खरीदल जा रहा है, जुताई कोड़ाई से लगाए अन्य चीज, उनमें फायदा से अधिक जो एक नुकसान हो जा रहा है, तो एक युक्ति यह अपनावल जा रहा है कि जो बाकी हम लोग एक तो घर पर खाद तैयार करें और घर पर कीटनाशक तैयार करें, एक एक खाद हम लोग पशुपालन करे पड़ी। पशुपालन करी है तो जनबा की दूध उत्पादन हुई, दूध बिक्री करके अच्छा मुनाफा हुई।
4: एक पंत कई काज यही बात के भुला भैया कहल जाला कि अगर हम लोगों ने देखा है पशुपालन करत है तो देखा कहीं न कहीं एक आय का स्रोत तैयार हुई।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और अगर आय का स्रोत हम लोगों ने देखा तैयार भी हुई, साथ में जो गाय का मुतारी, गाय के गोबर, ये सब चीज से देखा हम लोगों के खेत के खातिर खाद तैयार हुई। और देखा जेके भी आय अगर बढ़ावे के बात, सबसे पहले जो रासायनिक खाद का प्रयोग भैया ओके बंद करे, और ये जो अपन हई वाला खाद हो मिट्टी का जांच कराई, और जो वर्मी कंपोस्ट बा मिट्टी अरे खाद बा गोबर का खाद ये सबको अपने खेत में इस्तेमाल करें।
5: बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ जन बा की कच्चा माल यानी कि तत्काल बिक्री वाला, जैसे बकरी पालन हो गयी और मुर्गी पालन हो गयी, मछली पालन हो गयी, ये जब आवश्यकता हो तत्काल जन बा की बिक्री करके अच्छा मुनाफा कर ले, और उन लोग के जन बा की गोबर है लेड़ी है उसे जन बा की अनाज अच्छा उत्पादन हुई, खाद के काम करी, और साथ साथ जन बा की एक मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन से समझ जाए कि खेती में अच्छा आय बढ़ावे के स्रोत है, क्योंकि जब वो जाकर के एक दूसरे फसल पर बैठा ला मधुमक्खी तो एक पर से दूसरे पर जाए में परागण क्रिया जन होला, ऐसे अनाज डेढ़ गुना दुगुना उत्पादन बढ़ जाला। तो ऐसे एक ठे बहुत अच्छा है, खास खास होकर शहद हम लोग ले उसे जन बा की मुनाफा है, और वो जन बा की शहद की जन मधु बना ला वो जन बा की ओके मौन वो भी जन बा की बहुत लाभकारी है। ये तरीके कृषि में विविधीकरण करके भी हम लोग जन बा की अच्छा मुनाफा कर सकते
4: हैं। खेती किसानी के संगे संगे हम लोग पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन ये सब देखा अगर करत है तो देखा हम लोगन के सही में आय का स्रोत तो दुगुना होबे करी।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: साथ में देखा उनकर गाय का जो गोबर बा, मुतारी बा, अपन जो बकरी का जो लेड़ी बा, ये सब चीज से हम लोगन के खेत में जो पौष्टिकता बा,
5: बिल्कुल,
4: जो खेती जो जमीन बा, जो माटी माई है वो पूर्ण रूप से पौष्टिक हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। जे प्रकार से अगर हम लोगन घर में सही सही बढ़िया मतलब हरियर सब्जी का साग सेवन करीला, बढ़िया अनाज दूध का सेवन करीला तो शरीर पौष्टिक हो जाला।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: उही प्रकार से देखे हम लोगन भी तरह तरह का अपन खाद का इस्तेमाल करके माटी माई के स्वस्थ करल जाए, तबे देखा हम लोगन के जो साग बा सब्जी बा अपन बढ़ोतरी हुई, हम लोगन के भी जो आमदनी बा वो भी बढ़ी।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में जनबा की अभी विविधीकरण के वजन हम लोग बात करते रहे, वही क्रम में देसी मधुमक्खी पालन करे के भी लोगों की बहुत अच्छा अच्छा अच्छा अनुभव है, लेकिन पालन करे में जनबा की कुछ चुनौतियां भी है।
4: बिल्कुल।
5: और समाधान भी अगर का हो सकला ए पर भी जनबा की बातचीत
4: प्रकाश कुमार से बातचीत बा, हम तो कहम ना कि पंच भी लोगन बिना देर के लिए इनकर आप पर जानकारी सुना
5: कुछ
4: मधुमक्खी पालन का चुनौती और समाधान विषय पे जो आकाश कुमार मधुमक्खी पालक हुआ आपका भेंट मुलाकात बा, और हम तो चाहत है कि अपन हम भी हम लोगों सुन जाए अपने पंच में लोगों भी सुन,
5: लेकिन तब तक एक संदेश भी हो जाए।
4: चला
6: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
7: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
6: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
7: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
8: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के कठौंधी गांव में मधुमक्खी संरक्षक श्री आकाश कुमार जी से मुलाकात हो रही है। आप बगैर नुकसान पहुंचाए मधुमक्खियों का देख रेख करते हैं, और अधिकतर जो देसी मधुमक्खियां हैं उन लोगों को संरक्षित करने का भी काम करते हैं। जंगलों में कई प्रजाति के मधुमक्खियां पाए जाते हैं, जिनको रानी मक्खी सहित आप उतार करके ले करके और एक अपने अच्छे स्थानों पर ला करके उसको पालन करने का भी प्रबंध करते हैं। क्या कुछ अनुभव है आकाश कुमार जी को, आपसे बातचीत होगी। सबसे पहले आकाश कुमार जी आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये शहद के मक्खी जो होते हैं जंगल में बहुत पाए जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से मधुमक्खियों का नाम आप जान पाते हैं?
9: जी, जैसे उसमें से है भावर हो गया है, लंबाई हो गया है, हमारे लोकल भाषा में बोलेंगे
10: जी जी,
9: और सतघरा होता है, और छोटा छोटा जैसे होते हैं, और
10: कुछ जो है कि पेड़ के अंदर छेद में बनाते हैं, आने की ये सब कई तरह के हैं। इसे भावर आप अभी बोले, ये तो बहुत खतरनाक होता है
9: जी। तो हाँ, उसके लिए हम लोग मतलब किसी भी डाल पे रहेगा, हम लोग नीचे से रस्सी फेंक करके, और उसके लिए पीपी जो होता है पूरा ड्रेस होता है, पूरे सर से लेकर के पैर का तलवे तक पूरा ढका हुआ रहेगा।
10: अच्छा।
9: और रस्सी के सहारे हम चढ़ेंगे ऊपर, और जितना जैसे हम लोग पूरा शहद नहीं निकालते हैं उसमें से, अगर निकालेंगे भी तो
10: अच्छा,
9: जैसे 100% में 30% छोड़ दिया जाता है, 70% निकाल
10: ताकि उसमें लोग लपटे रहे।
9: हाँ, और जैसे उसमें ये लीली होते हैं, बच्चा होते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से निकले तो लोग का भोजन के लिए वहाँ कुछ रहे।
10: अच्छा।
9: छोड़ दिया जाता है ताकि वो लोग भी उस चीज को खा करके फिर आगे बढ़ेंगे।
10: अब जैसे भंवर की बात करें तो वो बहुत दूर तक दौड़ाता है, यहाँ तक कि जिसके ऊपर टूट जाए तो जानलेवा हमला भी करता है।
9: हाँ,
10: इससे बचने का उपाय करते हैं?
9: इसके लिए वही बोल रहे हैं, उसमें पूरा पीपीज होता है, पूरा
10: पहने रहते हैं,
9: ड्रेस होता है,
10: उसका डंक मन है शरीर में नहीं जा पाता,
9: नहीं घुसने पाते अंदर,
10: तो वो बगैर क्षति पहुँचाए कैसे उसको कर लेते हैं?
9: जैसे
10: बहुत लोग तो आग से झोल लेते हैं बहुत लोग।
9: हाँ, नहीं
10: ऐसा आप लोग भी करते हैं?
9: नहीं, उस तरह का नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास में वो ड्रेस है, हम लोग पूरे तरह से तो सुरक्षित रहते हैं, तो हम लोग को तो उस तरह का डर नहीं रहता है कि हम लोग को डंक में मार दे। वैसे भी कभी कभी होता है, कभी कभी घुस जाए या डंक लग जाए, तो उसमें भी तो उससे फायदा तो है, जैसे ज्यादा मक्खी नहीं काटे, दो चार काट ले तो फिर हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी गठिया उठिया में ऐसा
10: अच्छा
9: दवा भी आता है, वो सब शरीर के लिए फायदेमंद है।
10: हाँ।
9: जैसे ज्यादा ओवर डोज लग जाए तो शायद
10: आदमी को नुकसान
9: है, लेकिन जैसे दो चार हो गए तो उससे हम लोग डरते नहीं है। जैसे
10: मतलब ये मक्खियों के डंक से भी गठिया उठिया में लाभ पहुँचता है?
9: लाभ पहुँचता है।
10: अच्छा अच्छा अच्छा। और ये लंबाई वगैरह का?
9: लंबाई के लिए वो उतना आक्रामक नहीं होते हैं, ये लोग कभी कभी काट लिए हाथ में ज्यादा काटते हैं, जैसे हाथ में जो निकालेंगे तो ये दस्ताना पहन लेते हैं, रबड़ का होता है वो, तो उसमें नहीं घुसता है। अब तो हैबिट हो गया है, जैसे सतघरा हो गया, लंबाई हो गया है, तो हम लोग खुले हाथ में भी निकाल लेते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं
10: अच्छा
9: कह सकते, जैसे हर किसी का शरीर का वो हो जाता है, जैसे हम लोग का डंक मारते मारते उस तरह का हो गया है तो असर नहीं होता उस तरह का,
10: जी
9: दिक्कत नहीं करता है।
10: अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो सतघरा इत्यादि चाहे लंबाई या अन्य भी देसी जो भी हैं
9: जी,
10: उनको अगर जंगल से ला करके हम लोग अपने यहाँ बक्सा में बंद करना हो तो इसके लिए क्या उपाय करते हैं?
9: तो देखिए, इसमें जैसे अंधेरे में वो होता है, सतघरा होता है, सात घर वाला जो होता है वो अंधेरे में रहता है, और इंसान भी अंधेरे में रहता है घर बना करके, तो उन लोग को भी घर चाहिए होता है अंधेरा।
10: अच्छा।
9: तो हम उसको जैसे जो अंधेरे में रह रहा है उसको हम पालतू बना सकते हैं।
10: अच्छा।
9: और जैसे ये हो गया लंबाई हुआ, टुरुकी हुआ या भावर हुआ, ये खुले में रहना पसंद करते हैं, इसको अंधेरे में नहीं रहता है।
10: अभी टुरुकी आपको आ पाए
9: जी? टुरुकी,
10: इससे पहले जो है कि ध्यान में नहीं आ रहा था
9: जी,
10: जो मतलब उसके खोखले में करते हैं टुरुकी
9: होते हैं जी,
10: बिल्कुल छोटे छोटे जो मक्खियां।
9: अच्छा,
10: ये आपने अनुभव किया होगा जितने भी शहद हैं
9: जी,
10: इसे भंवर के शहद या लंबाई के शहद या ये सतघरा के टुरुकी के
9: जी,
10: इस सब में स्वाद में कौन अच्छा लगता है और पौष्टिक कौन होता है, कुछ आइडिया है?
9: देसी में तो हर शहद ही सही होता है, क्योंकि जैसे मौसम के हिसाब से होता है ना, जैसे किस मौसम का कौन सा शहद डालेगा तो रस डालेगा तो शहद बनेगा, तो उस हिसाब पे वो बात तो निर्भर करता है, जैसे परास का हो गया, आम का हुआ, तो टेस्ट तो अलग अलग आएगा, जैसे इमली का हुआ, इमली के सीजन में तो उसका टेस्ट अलग मतलब हल्का सा आता है अलग अलग करके।
10: अच्छा अच्छा।
9: शहद भी जैसे होता है ना कि किस सीजन में हो रहा है, तो सीजन वाले में जैसे मान लेते हैं कि नीम वाले में, नीम वाले का जैसे वो लोग का छाता जो जिसमें बना रहता है वो बहुत मायने रखता है, जैसे नीम पेड़ में हो गया।
10: अच्छा।
9: या फिर इमली का पेड़ में हो गया छाता, तो ये शहद बहुत अच्छा होता है।
10: अच्छा।
9: हाँ,
10: नीम के पेड़ वाला भी और इमली के पेड़ वाला,
9: इमली वाला भी, ये कुछ उस तरह का जैसे औषधि गुण
10: से भरपूर होता है।
9: भरपूर होता
10: है ये है। तो ये मतलब इसका वो है, तो लाने में मतलब कोई खास दिक्कत आपको नहीं होती है?
9: नहीं, उसके लिए झाड़ने निकालने के लिए हम लोग के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ये साथ में रहते हैं, अपने साथ में लिए रहते हैं पूरा व्यवस्था, जैसे जैसे भावर हम ज्यादातर नाइट में ही निकालते हैं, अंधेरे में रात को, क्योंकि उस एरिया में कोई ना हो।
10: अच्छा,
9: अगर दिन में कहीं हम लोग कहीं भी कर देंगे तो आधे किलोमीटर, एक किलोमीटर ऐसे, अगर एक आदमी को पकड़ लिया तो एक किलोमीटर तो निश्चित है दौड़ाता
10: है।
9: हाँ, तो इसलिए हम लोग दिन में नहीं काम करते हैं, रात में ज्यादातर करते हैं, ताकि वहाँ शांत माहौल रहे, कोई ना देखे, और अंधेरे में भी भावर इतना तेज नहीं भागते हैं, नहीं देख पाते हैं, इसलिए
10: अंधेरा में नहीं भाग पाते हैं ज्यादा। कम देखते हैं,
9: छाते में रह जाते हैं।
10: तो ये जैसे अभी आपने बताया कि कम से कम 30% छोड़ देते हैं शहद उन लोग के लिए
9: जी,
10: और उसके अतिरिक्त तो वाला ही केवल निकालते हैं।
9: हाँ,
10: तो वो ऐसा क्यों करते हैं?
9: क्योंकि जैसे उसके प्रजनन के लिए, उसके जैसे अभी हम लोग निकाल दिए तो फिर उसका जनरेशन तो बंद हो जाएगा ना, और यहाँ भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे, जैसे फल फूल में, साग सब्जी में, परागण जो एक दूसरे में जो फैलाते हैं, तो ये एक वो है, ये एग्रीकल्चर से प्रशिक्षण लिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको पूरा नष्ट नहीं करना है, उसको आगे उसका मतलब बढ़े आगे। और
10: अक्सर करके किसान लोग कभी कभार ये भी कहते हैं कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं वो जो है कि नुकसान कर रहे हैं फसल को, और वो सब जो है कि हमारे पौधों पर बैठ बैठ जाते हैं, फसल पर बैठ जाते हैं, तो नुकसान ऐसा भी है क्या?
9: नहीं, फायदे के सिवा नुकसान तो उसमें कुछ नहीं है।
10: अच्छा।
9: हाँ, ये लोग का बहम होगा कि नहीं कीड़ा लग रहा है, कीड़ा जैसा उस समय।
10: हाँ,
9: लेकिन ऐसा कुछ नहीं है
10: जी,
9: वो परागण एक दूसरे को करते हैं।
10: तो मतलब ये बहम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि उससे नुकसान होगा। तो मैंने जिनके भी खेतों में अगर बैठ रहे हैं मक्खियाँ, तो ये समझना चाहिए कि कहीं कहीं से हमारा खेत में अच्छा फसल उत्पादन के संभावनाएं हैं।
9: संभावना है सर।
10: तो इस तरीके से आप करते हैं, निश्चित रूप से अच्छा ही है। उन लोगों से क्या सुझाव देना चाहते हैं जो मधुमक्खियों को आग से झोल करके तब जो है कि शहद निकालते हैं?
9: हम तो यही कहते हैं कि अगर किसी के घर में छत में हो गया या दरवाजे में है, उनको डर है कि नहीं मेरे यहाँ मधुमक्खी बैठ गया है भावर, अब वो बच्चे उच्चे हैं सभी के दरवाजे में खेलते रहते हैं, तो उन लोग को डर रहता है कि नहीं कि कभी कभी काट ले ऐसा करके, तो ये लोग ना जलाएं। हमारा इसमें एक नंबर है, तो हम सोचते हैं कि हर किसी को नंबर मिले, और ताकि हम लोग वहाँ जा करके उस छाते को हटा करके हम एक कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, जंगल में ले जाकर छोड़ सकते हैं, ये दूसरी जगह में दे सकते हैं।
10: तो नंबर बता दें जरा।
9: और जी, मेरा नंबर है 77-54-86-96।
10: अच्छा,
9: ये नंबर। और जैसे उनको चाहिए कि होता है कुछ लोग कि अगर वो आएंगे तो हमको शहद नहीं देंगे, हमारे पेड़ में है, हमारे घर में है, तो हमको मिलना चाहिए, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो मार दें उस मधुमक्खी को, हम कहते हैं कि नहीं वो उसको हटवा लें, हम उस उन्हें जो झड़वाएंगे उनको आधे उनको शहद भी दे सकते हैं
10: जी जी।
9: हाँ, उनको जैसे दे दिया जाता है
10: वही
9: उनके वो हैं, तो लेकिन ये लोग अपने पूरे फायदे के लिए भी कुछ लोग मार देते हैं। हाँ, कि वो आएंगे तो ले जाएंगे,
10: पता चला कि वो फिर कभी नहीं शहद देने लायक रह जाएंगे,
9: फिर शहद देने लायक नहीं रहता है जी।
10: अच्छा, ये मान लीजिए शहद तो सीधा सीधा एक साथ साथ जो बाकी प्रकृति में इन लोग का और सहयोग होता है क्या मधुमक्खियों का?
9: जी, बहुत सहयोग है इनका,
10: यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, चिड़िया चुनगुन हैं, ये सारे लोग का भी योगदान है प्रकृति के संरक्षण में।
9: हाँ, अब इंसानों के लिए तो हर जीव जंतु एक फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो ऐसा नहीं है कि सभी को मार दिया जाए जैसे।
10: हाँ, तो ये आप दुधी बला के कटौली गाँव से है, ये जो मधुमक्खी संरक्षक है श्री आकाश कुमार जी, आप मधुमक्खी पालन तो करते ही हैं, साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीका से शहद निकालने का भी काम करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का मधुमक्खियों को दिक्कत ना आए, बगैर क्षति पहुंचाए, इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे, तो आकाश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बोला भैया, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया जानकारी देसी मधुमक्खी पालन का चुनौती और समाधान विषय पे जानकारी देवलना। और उम्मीद बाकी अपन किसान भी लोगों देखे हैं जो किसानी खेती किसानी के संगे संगे अपन मधुमक्खी पालन के जोन भी इनके मन में सवाल हुई कि इनके प्रश्न उत्तर से जोन भी अपन का जो प्रश्न का हर समस्या का समाधान जरूर मिलल हुई।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित रूप से ये बढ़ चढ़ के करे के भी चाहिए, फायदेमंद चीज है। और देखा हम लोग के जो तरीके शहद उत्पादन हो गए, चाहे अन्य भी जितना भी हम लोग पशुपालन की बात कर जा रहा है अनाज उत्पादन के, तो एक बार हम लोग दृष्टि रहला कि का भाव चल रहा है मंडी में, कैसे लेकर जन बाकी आमदनी हमें हो सकला तो ए पर भी हम लोग के बड़ा ध्यान रहला और अपेक्षा भी रहला। आपके हाथ में पाती भी एक देखा था।
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बातचीत जब बात होत रहला वही समय हाथ में पाती आये हमारे बाजार भाव दुद्धि मंडी का बसंत कुशवाहा भैया भेजले न।
5: अच्छा अच्छा,
4: अगर आप कहें तो अपने पंच भैया लोगन के बात के बता दें।
5: तो का कुंतल में है?
4: हाँ भैया, कुंतल में बाजार भाव है। लाल आलू देखे 1000 से 1200 रूपया कुंतल, सफेद आलू देखे 1200 से 1400 रूपया कुंतल, बैगन गोल वाला भैया 1800 से 2000 के बीच में है प्रति कुंतल, और लंबा बैगन देखे 1200 से 1500 के बीच में है, और जो लंबा हरा वाला बैगन होला वो देखे 1800 से 2000 के बीच में।
5: बात,
4: टमाटर देखे है अपन 2000 से 2200 रूपया बीच में है कुंतल, भिंडी देखे 1000 से 1200 रूपया, नेनुआ 1600 से 1800 रूपया प्रति कुंतल है, और करेला देखे 3000 से 3200 रूपया प्रति कुंतल। अपन लौकी देखे 1600 से 2000 रूपये के बीच में कुंतल।
5: अच्छा अच्छा, कुंतल में है।
4: और कोहड़ा जो एक पका वाला भैया वो देखे 1000 से 1200।
5: अच्छा, जो दूध गुड़ में बना के बना वाला मीठा वाला
4: हरा कोहड़ा है, जो कच्चा वाला होला जेके हम लोग कच्चा खोजल
5: जाता है
4: वो 1400 से 1600 के बीच में है प्रति कुंतल, और देखे अरुई 2000 से 2200 रूपया प्रति कुंतल, खेक्सा देखे 4500 से 5000 रूपया प्रति कुंतल, हरा मिर्चा 3500 से 4000 रूपए प्रति कुंतल, बंडा 3000 से 3500 रूपए प्रति कुंतल, खीरा 2000 से 2800 रूपए प्रति कुंतल, मूली देखे 2200 से 2500 रूपए के बीच में रहा आज।
5: अच्छा,
4: और अदरक देखे 13000 से 15000 रूपए के बीच में रहा प्रति कुंतल, और प्याज देखे 5000 से 5500 यानी 5500 रूपए प्रति कुंतल आज रहा, लहसुन देखे 17000 से 18000 रूपए प्रति कुंतल, और चुकंदर देखे 4500 से 5000 रूपया प्रति कुंतल रहल, और बोड़ा 1800 से 2200 रूपया प्रति कुंतल, कुनरू देखे 1500 से 1600, परवल भैया देखे 2500 से 3000 रूपये प्रति कुंतल रहल, फूल गोभी देखे 4000 से 4500 रूपया रहल।
5: अच्छा,
4: और जो देसी खेक्सा भैया वो देखे 15000 से 18000 रूपये बीच में रहल, हरा धनिया देखे 15000 से 16000 इहो रहल, और पालक देखे 2500 से 3000 के बीच में रहा।
5: अच्छा,
4: चौराई देखे 2000 से 2200 रूपया, पराठा 3500 से 4000 रूपया, और नींबू 150 से 200 रूपया सैकड़ा भैया रहा।
5: दूधी मंडी के बाजार भाव रहा।
4: बिल्कुल बिल्कुल भैया, बसंत कुशवाहा भैया के देवल जय। बहुत
5: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी इतना बढ़िया बांस के सुनोलन। हम लोग अब जाते समय सब्जी लेकर के जाए होगी, लेकिन बहुत देर से हम लोग की जानकारी मिल रहा है, बात बात कही हो रहा है, अब एक मन मनसायन की इच्छा होती
4: है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो एकदम देर कोने बात कर रामचंद्र दुबे भैया अपन
5: सुनावत,
4: बिना देर के लिए इनका गीत सुनल जाए।

0: लाख लाओ बहन।
1: देखा कितना बढ़िया रामचंद्र दुबे भैया अपन कहरवा सुनावत हवा। यही के साथ हम तो कहब कि अपन जौन वर्षा का जल बा भैया ओके संचय कैल जाए, काहे कि देखा जल का बहुत उपयोगिता होला,
0: हर जल ही जीवन,
1: जल ही जीवन बा। तो यही बात के संगे हम तो कहब आपका अपन कार्यक्रम यही समेटल जाए, चलल जाए।
0: सब पंचन के राम राम।

अभी ग्रामीण सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। इस समय शाम के 6:50 होने वाले कुछ ही एक क्षणों में हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कृष्णा भैया।
1: हाँ आकांक्षा बनी।
0: जब अपने खादन की माटी का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वही की उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होती है।
1: बिल्कुल, देखो अपने माटी के स्वास्थ्य निक रहा करे था तो अपन फसल निक होता है, अपन उत्पादन अच्छा होता है, अपन आमदनी अच्छा होता है। अगर फसल अपन सही ना हो तो जौन बा हम पंचन के घाटा लागत है। अब माटी के स्वास्थ्य जिसे आप बताओ तो माटी के स्वास्थ्य तो बहुत महत्वपूर्ण है हम पंचन के लिए।
0: भैया माटी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है वे क्या कबो कबो हम लोगों के यहाँ परीक्षण करवावे चाहिए और परीक्षण करे खातिर जो है विशेषज्ञ भैया लोग आवत हैं तो वे माटी के जांच करती है और माटी में यहाँ कौन पोषक तत्वन की कमी है वही के आधार पर यो निर्धारित होता है कि वे माटी के स्वास्थ्य का कैसे प्रबंधित की जाए।
1: जौन हम पंच अपने माटी के जाँच करावा करी थे वो माटी के जांच के संस्तुत के आधार पर हम पंचन के जौन बा खाद पास का व्यवस्था करे के चाहिए। अगर हम पंच जौन बा सूक्ष्म पोषक

0: के बाजार जरूरी गुणवत्ता मानकों और निर्यात प्रक्रिया की जानकारी देगी। बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसान, निर्यातक और FPO शामिल हुए और कई MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश में करीब 3000 निर्यातक सक्रिय हैं। कृषि औद्यानिक उत्पादों का निर्यात वर्ष 2016-17 के करीब 727 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 1132 करोड़ रुपए हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की उपज अमेरिका, UAE, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 20 से अधिक देशों में पहुंच रही है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क बनाया जाएगा, साथ ही 1000 करोड़ रुपए के भाव स्थिरता कोष और अन्य सुविधाओं के जरिए किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: बहनी देखो, अपने दुआरे जोन हरहा गुरु हैं बंधे, अगर उनके कोनो बीमारी जारी आ जावा करे था तो हमहो पंचन के परेशानी होता, साथ साथ में अपने हरहा गुरु के भी परेशानी होता।
5: बिल्कुल भैया,
4: आज की बातें में सुना जाए पशुओं में थनैला रोग कारण और निवारण, डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे इस मौसम में पशुओं का थनैला रोग है, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर PK त्रिपाठी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में थनैला रोग है क्या?
7: नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे दूध देने वाले पशु हैं उनके थन भी होता है, अयन भी होता है, और जब इस पर सूजन हो जाती है और दूध का रंग बदलने लग जाता है तो वही थनैला है।
6: डॉक्टर साहब, क्या ये बड़े और छोटे दोनों जानवरों में है?
7: कि जो भी दूध देता है, जो हमारा कशेरुक जानवर है, पीठ जिनके है, वो सब दूध देते हैं, और जहाँ पर दूध देते हैं जानवरों में मैस्टाइटिस होती है, ये सब में पाया जाता है, चाहे शूकर हो, बकरी हो, गाय हो, भेड़ हो, और यहाँ तक कि हमारे जो श्वान हैं उसमें भी ये देखा गया है कि ये होता है।
6: तो इसके मुख्य लक्षण तो आपने बताया कि थन में सूजन, इसके अलावा भी कुछ लक्षण और होंगे?
7: आप पहले तो ये देखें कि थनैली हो कैसे जाती है। थन से जब बाहर दूध आएगा, अगर इसमें किसी प्रकार का रुकावट होगी तो यहाँ से जीवाणु जो है वो अंदर चले जाते और थनैली का एक संक्रमण करते हैं। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि इस समय बरसात हो रही है, वैसे भी कीट पतंगे अगर थनों को काट लेते हैं तो वहां पर भी एकदम सूज जाएगा और एलर्जी कहते हैं, एलर्जी हो जाती है, और कुछ खाने पीने से भी एलर्जी हो जाती है जिसका कि प्रभाव थन पर पड़ता है। तीसरा जो एक और कारण है जो सब जगह देखा गया है कि जो फर्श पर हमारे गोवंश या भैंस जो दूध देने वाले बैठते हैं वहां पर कंकड़ीली पथरीली अगर जमीन है, उसके दबाव के कारण थन पर दबाव पड़ा, चोट लगी और उसको थनैली हो गई, अब सूजन हो गई, तो हमारे भाई लोग जो हैं वो दूध नहीं दूहते क्योंकि वहां पर दर्द हो रहा है, जब दर्द हो रहा है तो वहां पर दूध इकट्ठा हुआ और अब दूध में संक्रमण हो गया। जो हमारे गोवंश हैं या भैंस हैं ये पैर बहुत चलाते हैं, जब आप दूध दुहेंगे तो पैर मारेंगे तो पैर चलाने से भी चोट लगती है और इस चोट से भी थनैली हो सकती है। तीसरा जो एक और कारण है जो अधिकांश देखा गया है कि लोग पहली धार जमीन पर फेंक देते हैं। किसान भाइयों, कभी भी जमीन पर पहली धार मत फेंकें क्योंकि इस धार के द्वारा भी संक्रमण हो जाता है। जब भी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ कभी देखा गया कि एकदम थन सूज गया, जैसे ही थन सूजा हमने सोच लिया कि इसके रूप में

0: थनैली हो गई
1: जी।
0: कभी कभी बिना थनैली बिना संक्रमण के भी थन सूज जाता है जिसे एलर्जिक कहते हैं। अब उसमें आप एकदम ठंडे पानी से अगर आप धो देंगे सिकाई कर देंगे उससे कम
1: या बर्फ से सिकाई कर
0: या बर्फ से सिकाई करें या एलर्जी के कोई भी दवा आप दे दें तो वो सही हो जाएगा। दूसरा कभी कभी देखा है कि पहली बार के ब्यांत में थनों से खून आने लग जाता है खून के कतरे आ जाते हैं
1: जी।
0: अब हमारे किसान भाई तो कहते हैं कि भाई ये तो वो थनैली हो गई। नहीं थनैली वो नहीं हुई है कारण उसके पीछे क्या है जब एकदम बच्चा देने के समय में जब थन एकदम फैलता है तो उस समय छोटी छोटी जो उसकी
1: केशिकाएं
0: जो है वो फटती हैं जब फटती हैं तो वही दूध में आ जाती है।
1: लेकिन कभी कभी थनैला में भी खून की समस्या आती है दूध के साथ
0: निश्चित क्योंकि यही जो फटी है और वो रुक गई अब रुक गई तो वहां पर संक्रमण हो गया तो थनैली हो गई। अगर इसको हम समय से चेत जाएं तो निश्चित है कि थनैले को रोका जा सकता है क्योंकि हमारे जितना भी कुल जितना भी दूध जो है उसमें थनैले के कारण कम से 30 से 40% दूध हमारा इसी थनैले के कारण नुकसान हो रहा है।
1: यानी 30 से 40% जानवर प्रभावित हो जाते हैं
0: किसी में कम होता है किसी में ज्यादा।
1: डॉक्टर साहब इसका निवारण कैसे हो पशुपालक भाई कैसे जागरूक हो क्या कुछ करें कि उनके पशुओं में थनैला की समस्या ना आए।
0: बहुत बड़ा एक और भी कारण है जो हमारे पशुपालक है जब धोते हैं तो उनका हाथ गंदा होता है वो हाथ धोते ही नहीं है और गंदे हाथ से जब धोएंगे तो उसका भी संक्रमण अंदर चला जाता है। तो पहले तो अपना हाथ धोएं बाल्टी धोएं और उसका पानी जो है वो साफ रखें और उससे थन साफ करें
1: ये बचाव का उपाय
0: बचाव के लिए है अगर ये करते हैं नहीं होगा। दूसरा जिस फर्श पर बैठते हैं अब तो नया नया आ गया है कि रबर की एक फर्श आ गई है
1: पैड
0: आ गया है उसको बिछा देते हैं ताकि उसके थनों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े और दूसरा कि उसकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। तो एक तो ये है दूसरा ये कि दूध दुहते समय पूंछ को बांध दें क्योंकि दूध के समय वो पूंछ झाड़ती है मक्खी वक्खी को हटाने के लिए वो भी कर दें। और जो सबसे बड़ी चीज ये है तो हमने दूध तो पूरा दुहा ही नहीं और जहां पर पूरा दूध नहीं दुहा जाएगा थन के अंदर रह जाएगा तो उसमें भी संक्रमण हो जाएगा। भाइयों एक और चीज बहुत बड़ी चीज है ये संक्रमण भी तो कई तरह के होते हैं
1: जी
0: बहुत जीवाणु ये मुख्य रूप से जीवाणुओं के द्वारा है।
1: हाँ
0: स्टेप्टोकॉकस या स्टेफाइलोकॉकस दो तरह के मुख्य हैं वैसे तो बहुत सारे और भी हैं
1: हाँ लेकिन मुख्य जीवाणु जो है
0: और इन्हीं के कारण जो दूध जाता है उससे हमारा पेट भी खराब हो जाता है।
1: अच्छा
0: तो ये खराब दूध जो है ये अगर शरीर में जाएगा तो हमें भी
1: संक्रमण
0: डायरिया कर देगा संक्रमण हमें भी करेगा। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है कि जो भी जानवर उसका दूध समय से निकालते रहें गर्म पानी कभी भी प्रयोग मत करें ये मत सोचें कि सूज गया है तो गर्म पानी से बर्फ से या एकदम ठंडे पानी से दिन में 3-4 बार सेकें। नंबर 2 दूहने के बाद आयोडीन का सोल्यूशन ले लें उसको थन पर लगा दें ताकि बाहर से जीवाणु अंदर ना जाए। लाल दवा भी एकदम बहुत बढ़िया है जो हमारे गांव में तो लोग जानते हैं कि तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल करके इसका सोल्यूशन रखें उसी से सफाई करें तो
1: और दोहने के पहले और दोहने के बाद
0: के पहले और दोहने के बाद भी इसको करें। जब कभी भी अगर दूध में एक आध कण भी अगर खून का दिखाई दे तो एक बहुत घरेलू दवाएं बता रहे हैं फिटकरी और बोरिक पाउडर 10-10 ग्राम दोनों को मिला करके गुड़ के साथ खिला दीजिए 1-2 दिन के अंदर ये खून बंद हो। कभी कभी हमारे किसान भाइयों एक और देखते हैं कि दूध जो है गाढ़ा हो गया है फट रहा है इसमें ये होता क्या है कि पेट के अंदर शरीर के अंदर एक एसिडिक अम्लीय माध्यम रहता है एक क्षारीय तो जब ये माध्यम बदलेगा उस समय ये सामने आएगा और उसको सही करने के लिए उसका एक बहुत छोटा सा इलाज है खाने वाला मीठा सोडा 20 ग्राम खाने वाला मीठा सोडा गुड़ के साथ सुबह शाम दे दें आप 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि माने ये थनैली से इसका कोई रिलेशन नहीं है कोई मतलब नहीं है।
1: डॉक्टर साहब पशुओं में थनैला रोग की चर्चा हो रही है तो क्या दूध दुहने के आधा घंटे बाद तक जानवर को खड़े रखना है।
0: जैसा मैंने बताया कि अगर वो जमीन पर बैठ गया तो उसके थन का जो रास्ता जो है वो तो खुला ही हुआ है अभी
1: संक्रमण हो सकता है
0: इसीलिए बैठने वाली जगह एकदम साफ सुथरी हो तो एक तो वो हमें साफ रखना है बैठना नहीं देना है आधा घंटे तक उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका थन जो है उसका छिद्र बंद हो जाता है। एक तो ये काम करें दूसरे एक और चीज हमने गांव में देखी है नीम की सीख वो डालते हैं तो हमारे पशुपालक भाइयों बहनों कभी भी ये भूल करके
1: उसमें सीख
0: कभी मत डालें
1: ये खतरनाक
0: हो बहुत खतरनाक होता है कभी कभी तो सीख अंदर टूट जाती है
1: जी
0: और जो परेशानी करती है। चारा अगर आप ठिकाने से दे रहे हो हरा चारा

0: इसमें मिनरल मिक्सचर खनिज लवण बहुत बढ़िया काम करता है। अगर खनिज लवण उसको समय से दे रहे हैं उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
1: तो ये संक्रमण होगा ही नहीं?
0: संक्रमण नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा कि बचाव के उपाय, अब ये बताएं कि अगर थनेला हो ही गया तो इसका इलाज संभव है?
0: निश्चित संभव है, अगर समय से हो, निश्चित संभव। एलोवेरा सब जानते हैं,
1: हाँ,
0: 250 ग्राम ले लें,
1: या ग्वारपाठा,
0: या ग्वारपाठा जिसको कहते हैं, 50 ग्राम उसमें हल्दी डालते हैं
1: जी,
0: और 10 ग्राम चूना डालते हैं,
1: हाँ,
0: और इसको मिला करके इसका मलहम बनाते हैं। अब उसके थन जो सूजा हुआ है उस पर लगाएं, और हर घंटे माने 100 ml पानी में मिला करके,
1: हाँ,
0: पतला करके तब उसको लगाना है
1: जी,
0: और हर घंटे उसका दूध निकालते रहें।
1: अच्छा,
0: तो ये देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा है, थनेला जिस पर कि 20-25 हजार रुपया हमारे लोग खर्च कर देते हैं, तो रात में सरसों का तेल आप ले लीजिए, 200-250 ml ले लीजिए, और इसमें हल्दी डाल दीजिए, ये दोनों मिला करके अब उसको थन पर लगा दीजिए, ये रात भर के लिए,
1: ताकि मुलायम रहे,
0: ताकि मुलायम रहे। दूध अगर रुका नहीं कि संक्रमण हुआ, तो इसको अगर करेंगे निश्चित है थनेली नहीं होगी, और अगर हो जाते, अगर इससे भी नहीं होता है, तब आप पास के पशु चिकित्सक को बुला करके उसकी दवाएं भी हैं।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में थनेला रोग कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-15-15-28-98-9415-15-28-9898।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और भैया सावन का महीना तो काल जो है खत्म हो गया है।
4: हाँ।
3: मुला जो है कजरी गीत अब हम लोगों के यहाँ जो है सुनाई पड़ रहे हैं तो हम अपने कार्यक्रम यहाँ लाए एक कजरी गीत जी का गा रहे हैं अच्छे लाल सोनी भैया। तो आओ एक सुना जाए।
4: बिल्कुल।

0: अब आनी देखो अपने पंच भैया जौन हैं एक अच्छे अच्छे उत्पादन करा करते हैं और ऐसे अपने बीच में आज के किसान हैं सतीश कुमार यादव भैया और परवल उत्पादन पे अपन बताए रहे हैं अनुभव, तो आओ सुना जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर ब्लॉक के गोहनिया गांव, जहां परवल के लाल सतीश कुमार यादव भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। सतीश भैया नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार।
1: सतीश भैया, आप परवल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस साल कितना रकबा है आपका परवल का?
2: इस समय हमारे पास परवल का रकबा 2.5 एकड़ है।
1: 2.5 एकड़ है?
2: 2.5 एकड़ है सर।
1: कौन कौन सी वैरायटी लगाए हैं परवल की?
2: हमारे पास परवल की 2 वैरायटी है, नरेंद्र 260 नरेंद्र 502, परवल की 2 वैरायटी है हमारे पास।
1: क्या खासियत महसूस करते हैं? ये तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रजातियां हैं।
2: जी जी, खासियत ये है कि जो नरेंद्र 260 है वो लंबी वैरायटी है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। जो 502 है थोड़ा लेट में होती है, लेकिन मार्केट रेट जो है 502 का बड़ा बेहतर है, इसीलिए दोनों वैरायटियों को मैंने चयनित किया। दोनों को लगभग आधा आधा रकबा
1: तो
2: दिया है।
1: कुल 2.5 एकड़ रकबा है, 1.25 एकड़ एक प्रजाति, 1.25 एकड़ दूसरी प्रजाति।
2: जी जी जी जी।
1: कुछ स्थानीय प्रजातियां नहीं लगाए हैं?
2: नहीं, ये तो काफी समय से बड़ी बेहतरीन वैरायटी है, हमको इसी में बड़ा बेहतर लग रहा है। एक दो वैरायटियां लगाए थे लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आया नहीं हमको, फिर इसी पर आ गए हम।
1: तो इस समय निकासी चल रही है?
2: निकासी चल रही है, प्रतिदिन 2 क्विंटल उत्पादन निकल रहा है परवल का
1: प्रतिदिन।
2: जी जी जी।
1: तो किसान भाई बहन जानना चाहेंगे कि परवल की रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के फलत तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं परवल में?
2: अगर आपको परवल लगाना है तो अक्टूबर के महीने में खेत की ढंग से जुताई करके रोटावेटर से कल्टीवेटर से, उसके बाद में देसी खाद डलवा करके खेत को पाटा लगवा करके छोड़ देना चाहिए।
1: हाँ।
2: उसके बाद 15-20 अक्टूबर के आसपास आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जो पौधों की रोपाई होगी, अगर भारी मिट्टी होगी काली तो आप 4x8 पर लगाएंगे, अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो 5x10 पर लगाएंगे पौधे को। पौधा लाइन की दूरी 10 फीट रहेगी, पौधे से दूरी 5 फीट रहेगी।
1: तो परवल की सकर्स लगाने में भी खास सावधानी है?
2: परवल लगाने में खास सावधानी है, 2-3 प्रकार की लगाई जा सकती है, जैसे अंग्रेजी के 8 के आकार बना करके लगा सकते हैं, कि दोनों साइड में आप बीच में मिट्टी डालने का टेम है, दोनों साइड में निकला रहे, वो भी आप कर सकते हैं।
1: अक्टूबर में लगाने के बाद जमा फुटाव कितने दिन में हो जाएगा?
2: 1 हफ्ते बाद लगभग 8 से 10 दिन में जमा हो जाएगा।
1: उसके बाद की देखभाल?
2: उसके बाद भी देखभाल यही है कि वो नवंबर में, नवंबर दिसंबर शुष्क अवस्था में पौधा पड़ा रहेगा।
1: हाँ।
2: जैसे 20 जनवरी या फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो कल्ला तेजी से भागने लगेगा, और उसके बाद में फलत आपको मान लीजिए कि 20 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगी।
1: तो फसल की भूख और प्यास कैसे मिटाएं, कब मिटाएं, कितना मिटाएं?
2: तो फसल की भूख और प्यास मिटाने के लिए आप फरवरी में गोबर की देसी पास, डीएपी, पोटास, सुपर, ये सब जड़ के पास दे करके सिंचाई करवा देनी चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद पल्ला बढ़िया ठीक ठाक आगे निकलेगा, पौधा का विकास होना शुरू हो जाएगा।
1: तो आपकी निकासी अप्रैल के शुरू से अब तक चल रही है?
2: लगभग 10 अप्रैल के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है हमारी परवल की।
1: और ये चलेगा कब तक?
2: लगभग ये चलेगा 15 से 20 नवम्बर तक चलेगा लगातार ये।
1: कितने वर्षों से आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं?
2: परवल लगभग 10-12 साल से लगातार हम उत्पादन कर रहे हैं परवल का। पहले
1: कुछ समस्याएं भी आती होंगी परवल उत्पादन?
2: वही जुलाई अगस्त के महीने में बारिश ज्यादा हो जाती है तब फंगस अटैक होता है।
1: तो जल निकास प्रबंध करते होंगे
2: आप? जब फंगस की समस्याएं ज्यादा बारिश होती है तब दिखाई पड़ती है, तो आप फंगीसाइड इस्तेमाल लगभग 10-15 दिन करना पड़ेगा आपको। जुलाई अगस्त से दिक्कत रहती है, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होती।
1: तो आपने मचान पर परवल चढ़ाया है या कोई
2: नहीं,
1: और
2: हमारा
1: तरीके?
2: तो मचान पर नहीं है, जमीन पर है, उसमें मैंने पुआल का नीचे पुआल बिछवा दिया, उसके ऊपर परवल चढ़ा है।
1: अच्छा, मल्चिंग है नीचे परवल?
2: तो पहले की मल्चिंग मैंने कराया है,
1: उससे नमी भी संचित रहती होगी?
2: नमी बराबर बनी रहती है। आपको मान लीजिए कि एक गर्मी के महीने में इतना अच्छी नमी बनाए रखता है, एक बार आप सिंचाई कर दिए 15 दिन सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: बीच बीच में कुछ फसल की भूख मिटाने के लिए देते होंगे खुराक?
2: मान लीजिए कि एक महीने में एक बार जरूर आपको, जैसे कि डीएपी हुआ, जैम हुआ, जैम के पास देना पड़ता है।
1: हाँ।
2: पूरा पौधा फिर उसी तरह विकास की ओर बढ़ता रहेगा।
1: जल के लिए उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं?
2: पानी छिड़काव तो वही हम डीएपी का करते हैं और एनपीके का करते हैं।
1: अच्छा, एनपीके का?
2: एनपीके 034 वार दो तीन स्टेप में करते हैं।
1: अच्छा,
2: सबसे पहले 1919 हुआ, उसके बाद में 0034 हुआ, उसके बाद 0050 लास्ट पोजिशन पर जो है हालत की स्थिति में रहेगा तब।
1: फसल सुरक्षा के लिए कुछ जैविक उपाय भी करते हैं?
2: अब लगे जैविक उपाय में नीम आयल का स्प्रे करते हैं, ज्यादा अधिक अगर नुकसान स्तर बढ़ा तब कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, नहीं तो इसी से काम चला लेते हैं।
1: सतीश भैया, पिछले 10-12 सालों से लगातार आप परवल का उत्पादन कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
2: एक एकड़ में लागत लगभग 70 से 80 हजार रुपए आ जाती है, उत्पादन लगभग 200 से 250 क्विंटल के आसपास आ जाता है, तो कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास हमारा एकड़ में मुनाफा हो जाता है।
1: यानी बचत?
2: जी जी जी जी।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है परवल उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: अब किसान भाइयों बहनों को हम यही सलाह देना चाह रहे हैं कि आप बाहर ना जा करके अपने घर में ही अच्छा काम कर सकते हैं, विशेष करके परवल जो है आप करिए, भरपूर फायदा लीजिए और खेती को सफल बनाइए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9116 29 13 72, 9116291372, 9116291372।
1: सतीश कुमार यादव भैया, आप एक युवा किसान हैं, आज के किसान क्रम में आपसे परवल उत्पादन पर इतनी अच्छी बात हुई कि आप 2.5 एकड़ परवल उत्पादन कर रहे हैं और आधा एकड़ से शुरू करके आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बनी देखो, आज के बैठकी में अपन कार्यक्रम कैसा लगा? वो पंच भैया अगर पाती के माध्यम से हम पंचन लिखा चाहते हैं या कोनो सुझाव दिया चाहते हैं तो पता अपन बता दी जाए। अपने कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड है 22600001।
3: अभी आपने कार्यक्रम के एक मेल आईडी है, अभी मेल आईडी क्या पता है? farmandhomeair

0: rlko@gmail.com, और ये मेल आईडी पर अपन जो है पंच भाई अपन सुझाव भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो बहनी पंच भाइयों से लें जाए विदा।
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद देवरिया के सलेमपुर और भाटपारदानी विधानसभा क्षेत्रों में 305 करोड़ रुपए की लागत की 80 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के

0: सुशासन का परिणाम है कि गरीब को बिना मांगे राशन, बिजली, आवास, शौचालय और नौजवान को रोजगार और सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में देवरिया विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: देवरिया आज विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, कहीं बाईपास बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं सिंगल लेन की सड़क डबल लेन में, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन की सिक्स लेन में, कहीं कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है, कहीं नौजवानों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में एक नया परिवर्तन करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम और 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम हो रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार निगरानी रखने और चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा है। साथ ही स्वाइन फ्लू की स्थिति में किसी भी संभावित बदलाव की जानकारी तत्काल शासन में उच्च स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यक जांच कराएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज प्रदेश भर के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा है, बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर व्यय दोगुना हो गया है और 34 वर्षों के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए।
3: विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं, और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो ऐसे लोग समाज के निर्माण में और राष्ट्र को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे युवाओं के निर्माण का भी होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों से प्रेरित होकर नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और सेशल्स गणराज्य की प्रथम महिला वेरोनिक हर्मनी आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित मिशन शक्ति सेट स्पेस वॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में टीम वर्क की अहम भूमिका होती है।
4: 108 देशों से बच्चे आई हैं जो जुड़ी हैं इस मिशन से, और जिन्होंने मिलकर शक्ति सेट का एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है और बहुत खुश हूँ मैं ये जानकर कि इतने सारे देशों को हम जोड़

0: पाए और एक साथ जगह इस जगह पे ला पाए जो कि अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन में टीम वर्क की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इससे ज्यादा अहमियत हम दिखा नहीं सकते इस मिशन ने दिखाई है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अतिवृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों में करीब 26 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है।
2: सर्पदंश से किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, उसको हमें आपदा राहत के दायरे में लेकर के तत्काल उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते। 2017 के पहले ये सुविधा नहीं थी। कोई किसान, कोई बटाईदार, किसान के परिवार का सदस्य, बटाईदार के इस परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली से, बाढ़ से अगर वह प्रभावित हो जाए, तत्काल कृषक दुर्घटना बीमा में उसे शामिल करते हुए उस परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत उपलब्ध करवाते हैं।
1: भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ स्थित नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र में आज खेलो इंडिया स्कीम 2026-31 को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक आत्मप्रकाश ने स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयास कर रहा है। स्कीम इस प्रयास को प्रभावी रूप से बढ़ाने का कदम है। प्रदेश भर में आज महान हॉकी खिलाड़ी और पद्मभूषण पुरस्कार विजेता मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। अमरोहा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के मध्य फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 305 करोड़ रुपए लागत की 80 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों को पहुंचाया योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। और राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
4: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
5: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इंडियन बाबू के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह अस्थाई और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए

0: प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 118 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 89 रुपए यानी कि 89 रुपीस निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: किधर है?
4: बेटे का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट।
3: ये तो झटपट काम है।
4: कैसे?
3: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
4: और बाकी चेंजेस?
3: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
0: RBI कहता है
5: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे भैरवी फिल्म में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत लिखा था अमित खन्ना ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं RD बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखा ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

आकाशवाणी ओबरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मासूम फिल्म में अभिजीत और साधना सरगम को। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का। समय हो गया है शाम के 7:52 और 20 सेकंड।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे जावेद के लिखे गीत को। संगीत दिया था अनु मलिक ने, आवाज थी कुमार सानू की और फिल्म थी यस बॉस। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गजलें। पहली गजल पेश है वाजिदा तबस्सुम की लिखी हुई, फनकार हैं जगजीत सिंह। मतला है, या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जब भी सौदा खरा कीजिए, अब जफा कीजिए या वफा कीजिए, आखिरी वक्त है बस दुआ कीजिए।

अरबा मदार से अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम की लिखी ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप लुत्फ ले रहे हैं चंद गजलों का। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में कत्ल शुफाई की रचना। एल्बम है अदा और इसका मतला है तुम पूछो और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं, सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में कवल शिफाई की ये रचना।

कतिल शिफाई की लिखी ये गजल अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में। एल्बम थी मोहब्बत। इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षाबंधन यूपी 112 है हर परिवार के साथ।
1: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
0: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
1: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: यूपी 112 द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी उभरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय हो गया है रात्रि के 8:21 और 56 सेकेंड। रेडियो सिर्फ पे मैं प्रियंका। अगला गीत आइए सुनते हैं कलाकार फिल्म से किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें लुत्फ लीजिए चंद गजलों का। पहली गजल आइए सुनते हैं इब्राहिम अश्क की लिखी हुई, आवाज है चंदन दास की।

आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप लुत्फ ले रहे हैं चंद गजलों का। अब आइए सुनते हैं मनहर उदास की आवाज में ये अगली गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में मीर तकी मीर का कलाम। इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में

0: अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति

0: सरकार ने बीआर अंबेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की।

अभी आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलजार के लिखे बोल को। आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म थी घर। आकाशवाणी उभरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को। संगीत दिया है रवि ने और फिल्म है दो बदन।

0: आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।

0: फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। समय हो गया है रात्रि के 9:24 और 36 सेकंड। रेडियो सेट पर मैं प्रियंका। कार्यक्रम का आखिरी गीत लुटेरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे बोल को लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारी लाल ने और फिल्म थी लुटेरा। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत समाप्त हुआ। FM 102.7 पर आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज के युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण, सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खानपान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खानपान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे

0: छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज करती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकाश शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश के जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जेनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डेलुली आपके ख्याल ही पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डेलुलू वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैराशोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेन जी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेन जी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है, लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेन जी तक पहुंचना है तो जेन जी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेन जी पहले से मौजूद है, और लिंगो वही चलेगा जो जेन जी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है, वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेन जी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
0: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
3: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवा

0: युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई। उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीजों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसीलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
0: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी

0: कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
1: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनी अट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
2: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
3: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
2: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
3: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
2: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो

0: से होता है, क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
1: मेरा नाम अनश्वरा है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती, एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माई कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूर्स बहुत अट्रैक्टेड रही हूँ, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊँ, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली प्रेफर।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकी अट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत, जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय डॉक्टर मंडपाका शारदा।
0: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपाका शारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपाका शारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपाका शारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कंपोजर भी हैं।
1: बोर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपाका शारदा वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक एट एन अर्ली एज। She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komandiri Krishnamacharyulu. Dr. Mandapaka Sharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Pattanam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swara Tarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapaka Sharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपाका शारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर मंडपाका शारदा इज अकॉम्पनीड बाय श्री महादासु नीलाद्री राव ऑन द वायलिन, श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ऑन द मृदंगम एंड श्री सरस्वतुला हनुमंत राव ऑन द घटम।
0: डॉक्टर मंडपाका शारदा आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हैं बेगड़ राग में संत त्यागराज की रचना भक्तुनि चारित्रमु से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर मंडपाका शारदा बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन विद भक्तुनि चारित्रमु, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन बेगड़ रागम आदि ताल।

नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया मालव गौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी जो कि मिश्र चापू ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam Misra Chaputalam.

0: अब सुनिए शुद्धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है.
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी. इट इज इन शुद्धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादा सुनीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदु चरण पंकजमुले, जो की आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

व्याथा तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री सुसरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंतराव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों

0: में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के उग्रह केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।